ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: राजनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देश

0: देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।
2: एपिसोड नंबर 460 407।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, नहीं उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए

भी मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, स्वर थे कि सुरेश वाडकर के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सुविचार, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

सुप्रभात दोस्तों, सोमवार की इस फ्रेश सुबह में आप सबका स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत में। नया हफ्ता, नए गोल्स और एक नई पॉजिटिव बिगनिंग, इसके साथ हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीतू, और अगले एक घंटे तक हम साथ रहेंगे कुछ प्यारी बातों और एवरग्रीन गानों के साथ। सोमवार की जो सुबह है उसका नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा लेज़ी फील करने लगते हैं, लेकिन अगर दिन की शुरुआत अच्छे संगीत और सकारात्मक सोच के साथ हो तो पूरा जो हफ्ता है वो बहुत बेहतर लगने लगता है। तो चाय रेडी रखिए और शुरू करते हैं आज का ये म्यूज़िकल सफ़र।

दोस्तों, जो हर सोमवार होता है वो एक फ्रेश नोटबुक के पहले पेज की तरह होता है। हम जैसे चाहें वैसे उसमें रंग भर सकते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं। कभी-कभी बस एक सकारात्मक सोच पूरा मूड चेंज कर देती है।

कितना एनर्जेटिक और पॉजिटिव गीत था ना ये दोस्तों। अगर आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक में है कहीं, तो हमारे साथ बने रहिए।

90 के दशक के गीत, इनकी बात ही कुछ और होती है। एकदम सरल सौहार्द्र सा इनका म्यूजिक, आत्मा को प्रसन्न कर देने वाले इनके बोल और दिल को छू जाने वाले इनके इमोशंस। आज भी जब ये गाने सुनते हैं तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं।

दोस्तों, लाइफ में प्रेशर सबके पास होता है, लेकिन ज़रूरी है कि खुद को एक ब्रेक दें और स्माइल करें। कभी कभी हम फ्यूचर की टेंशन में आज को एंजॉय करना भूल जाते हैं। इसलिए आज का जो सिंपल सा विचार है वो ये है कि एक दिन में पूरी लाइफ सॉल्व नहीं होती, लेकिन एक पॉजिटिव डे लाइफ को बेहतर ज़रूर बना सकता है।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आप हैं आपकी रेडियो सखी नीतू के साथ और प्रोग्राम का नाम कुछ बातें कुछ गीत। गुफ्तगू यूं ही जारी रहेगी, आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत।

तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सोमवार है, सोमवार को स्ट्रेस लेना जो है वो एकदम अलाउ नहीं होता। बस कामली अपने जो काम है उसे कीजिए, बिल्कुल शांति के साथ। ट्रैफिक में पेशेंस रखिए और खुद को अनावश्यक जो प्रेशर है उसमें मत आने दीजिए। जो म्यूज़िक है उसको लाइफ का एक पार्ट बनाए रखिए। अगर नहीं बनाया है अब तक तो अब बना लीजिए, क्योंकि सच में जो कुछ गाने होते हैं वो थेरेपी की तरह काम करते हैं।

सफ़र दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखरी ज़िंदगी को समझने का एक वसीला है और ज़िंदगी की रवानी का इख्तियारा भी। शायरों ने सफ़र की जो मुश्किलें हैं और इससे हासिल होने वाली जो खुशियां हैं उसका बिल्कुल अलग अलग ढंग से इजहार किया है। सफ़र, या यूँ कहूँ कि जो सोमवार की सुबह होती है वो भी सफ़र, एक नया सफ़र ही है दोस्तों। एकदम एक नई नोटबुक का नया पेज जिसे हम किसी भी रंग से, अपने तरीके से रंग सकते हैं।

खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है।

दोस्तों, अब जो वक्त है वो हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। जी हाँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कुछ बातें, कुछ गीत की आज की ये सोमवार की सुबह, इसने आपके दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट ज़रूर दिया होगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर ढूंढिए। मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो सखी नीतू। फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नए गीतों के, नए एहसासों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास

0: पास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नई पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं

0: आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर

0: ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, a Sweden-India technology and AI corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation has transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership with Sweden.

0: नमस्ते सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और साथियों, इसके साथ ही आपको रखेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: दोस्तों, आज की नमस्कार की टीम में हमारे साथ ट्रांसमीटर पर हैं पीके सेन और चंद्रा राम पटेल। कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। एचपीटी कंसोल पर साथ दे रही हैं उद्घोषिका नीतू। वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका हिना खान।

0: कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की और संयोजन राजेश लामरोड का।
1: और दोस्तों इसके साथ ही आपके आज के होस्ट हैं मैं हूं मनीषा जोशी बोरा और मेरे साथ हैं
0: और मैं हूं चंद्रकला सुथार।

ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे आज का दिन सबको रास आए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको गाना नया नवेला।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं अक्सर मेहनत, कोई भी काम का जो परिणाम होता है, मेहनत का परिणाम होता है, नतीजा होता है, वो तुरंत नहीं मिलता है। ऐसे में धैर्य ही रखना होता है, सही वक्त का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि धैर्य रखने से हमारे अंदर हौसले को बनाए रखने की जो हिम्मत होती है वो बनी रहती है, और धैर्य रखने से हमारी सोच में एक गहराई आती है और हमें जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से भी बचाती है। क्यों मनीषा?
1: बिल्कुल चंद्रकला जी, और इसी बात पे मुझे कहानी याद आ रही है। कहानियाँ जो हमें हमारे मार्ग में बहुत सहायता करती है, हमें जो दादी नानी से सुनने को मिलती है, वो हमारे आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पैदा करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। और ऐसी एक कहानी मुझे भी याद आ रही है, तो क्यों ना शेयर करते हैं हमारे लिसनर्स के साथ में। दोस्तों, इस कहानी का जो शीर्षक है वो है जादुई बीज। एक गाँव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, लेकिन वो थोड़ा अधीर था। वो चाहता था कि हर काम तुरंत हो जाए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने मोहन को एक छोटा सा बीज देते हुए कहा कि बेटा, ये जादुई बीज है, और अगर तुम इसकी सच्चे मन से देखभाल करोगी तो यह तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा खजाना देगा। बस मोहन की खुशी बढ़ती गई और उसने देखा कि वो बीज ले जाकर उसने अपने आंगन में बो दिया। अगले दिन वो दौड़ कर देखने गया कि कल जो बीज मैंने लगाया था उसमें से कुछ निकला कि नहीं। देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा उदास हो गया। तीसरे दिन भी कुछ नहीं उगा तो उसने गुस्से में कहा, ये कैसा जादुई बीज है? तो उसकी दीदी मुस्कुराई और बोली, बेटा, प्रकृति को जल्दी पसंद नहीं है, फल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो मोहन ने अपनी दीदी की बात मानकर रोज बीज को पानी देना शुरू किया। कई दिनों बाद मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे फल आने लगे, तो गांव के लोग उसके फल खाने के लिए आने लगे। एक दिन मोहन को समझ आया कि असली खजाना जो है वो सोना चांदी नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत है। उसने दीदी से कहा कि अब समझ आया कि ये जो जादू था वो बीज में नहीं था, जादू तो मेहनत और इंतजार में था। तो दोस्तों, हमें यही सीख मिलती है कि हम धैर्य और लगातार मेहनत से ही अच्छे परिणाम पा सकते हैं। जो व्यक्ति अधीर है वो कभी भी अपने सफलता को पा नहीं पाएगा, क्योंकि कभी वो एक काम छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, और ऐसे में सफलताएं आधी अधूरी रह जाएंगी। सफलता तभी मिलती है जब हम पूरे धैर्य से, पूरे मनोयोग से उसमें जुट जाएं और उसके फल आने का इंतजार करें।
0: बिल्कुल मनीषा, जब मेहनत का साथ धैर्य का साथ मिल जाता है, मेहनत और धैर्य का जब साथ मिल जाता है, तो राह कितनी भी पथरीली क्यों न हो, कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है।

दोस्तों, जीने के इशारे तो तभी मिलेंगे जब हम अपना नज़रिया बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियाँ भी तब तक नहीं बदलती है जब तक हम खुद को नहीं बदलते, क्योंकि जब हम अपनी सोच और अपना नज़रिया बदलते हैं तो ये दुनिया, ये हालात, सब कुछ अपने आप बदला हुआ नज़र आने लगता है। और कहते भी है ना कि नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।

0: मनीषा, सुबह सुबह अखबार खोलो तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि पढ़कर दिल उदास हो जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर हमारी मरुभूमि के लिए पढ़ने को मिली। वो ये है कि अमूमन हम इंसानों की आबादी बढ़ने की खबरें तो हम सुनते ही हैं, जो चिंता पैदा करती है। लेकिन खबर उन बेजुबानों की है जिनकी रौनक से हमारा मरुस्थल एक बार फिर से आबाद हो रहा है।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल। वन विभाग की साल 2026 की ताज़ा वन्य जीव गणना से एक ऐसी सुखद और चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर आई है जो ये साबित करती है कि अगर इंसान और प्रकृति हाथ मिला लें तो मरुभूमि में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। जब जब मनुष्य ने अपनी धरती, अपनी गोचर भूमि और अपने जल स्रोतों की कद्र की है, प्रकृति ने उसे दोगुनी खूबसूरती लौटाई है। दोस्तों, साल 2026 की वन्य जीव गणना के आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं कि जागरूकता और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से हमारे जंगलों में और गांवों में रौनक वापस लौट आई है। विशेषकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में आई इस बात का शुभ संकेत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित और सतरंगी पर्यावरण की

0: गवाह बनेगी। दोस्तों, वर्ष 2022 में जहां मोरों की संख्या 2187 थी, वहीं अब बढ़कर 5905 पहुंच गई है। यानी कि हर साल इन चार सालों में 3718 मोर बढ़ चुके हैं।
1: और आज से 25 साल पहले मनीषा देखा जाए तो पहले कायलाना और बड़ा भाकर क्षेत्र में इक्का दुक्का मोर ही दिखाई देते थे, जबकि आज जागरूकता के कारण इस क्षेत्र में 50 से ज्यादा मोर आसानी से नजर आने लगे हैं। देखे तुमने कभी?
0: नहीं अभी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे दिखाई ही दे रहे हैं।
1: हाँ, तो ये इसी का ही परिणाम है। और इसी तरह चिंकारा है, कृष्ण मृग है, नील गाय है, सियारों की संख्या है, भेड़िए हैं, मरु लोमड़ी है, इनकी भी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है।
0: बिल्कुल, नील गाय तो आजकल सड़कों पर देखने को मिल ही जाती है।
1: और यह सचमुच एक शुभ संकेत ही तो है।

0: दोस्तों 9 बजने वाले हैं, यहाँ हम न्यूज़ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कश्मीर है। कुछ ही देर में यानी 9 बजे आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग

0: के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम कुस्तला का रहने वाला हूं और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपए प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपए मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिस चीज का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुस्तला का रहने वाला हूं और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपए मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की दूर दराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
3: पिछले 1 सप्ताह से हीटवेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की हैं, इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले 1 वीक से ये एक टिपिकल हीटवेव का स्पेल जारी है और अभी भी अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक ये हीटवेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
0: चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अम्बाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने

0: पहले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा एक दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाई माधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीटवेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नमस्कार प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक के बाद। दोस्तों हम आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ।

दोस्तों, 1974 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और इस मिशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था।

जी दोस्तों, 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई कि कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। और कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा कि आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों, इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था और 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर एल की शक्ल में बने शाफ्ट में पहुंचा दिया गया था। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल में जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया था। शायद इसीलिए पोखरण 1 को

0: बुद्ध की मुस्कान कोड नाम दिया गया था और परीक्षण के लिए पोखरण को इसीलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। दोस्तों, भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु दिवस मनाया जाता है और आज भी है 18 मई, यानी कि आज है पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1998 में और भारत ने 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए इन परमाणु परीक्षणों ने अमेरिका, पाकिस्तान सहित कई देशों को अचंभित कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के रूप तौर पर उभरी थी।
1: जी हाँ दोस्तों, इससे पता चलता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या महत्व है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता किसी देश को धमकाने के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन परमाणु बम बनाकर भारत ने यह जरूर साबित कर दिया कि वह किसी से भी कम नहीं है।

0: दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। यह यादें भी कई तरह से संजो कर रखी जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजो कर रखा, जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए, उसे नुकसान न पहुँचे इसके लिए कई संग्रहालय बना दिए गए जो हमें अपने पूर्वजों की याद रखने में मदद करते हैं। किताबें, पांडुलिपियाँ, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और दूसरे सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं, जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है।
1: और हाँ दोस्तों, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में संग्रहालयों के महत्व को समझाना और लोगों को संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इतिहास और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिले, लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़े और नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ा जाए, शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित भी किया जाए। दोस्तों, क्या होता है संग्रहालय? वही होता है जहाँ पर पुरानी वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, मूर्तियाँ, चित्र और कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं और लोगों को दिखाई जाती हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं और शोध में, वर्तमान में जो बच्चे शोध कर रहे हैं उसमें भी मदद करते हैं।
0: दोस्तों, भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य

0: उद्देश्य आम जनता, छात्रों और शोधार्थियों को विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना है। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 2011 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय और स्मृति निर्धारित किया।
1: जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि संग्रहालय केवल पुरानी चीजों का स्थान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान की जीवंत झलक है।

0: दोस्तों, जब भी पानी का जिक्र होता है तो प्यास से जोड़कर हमेशा देखा जाता है। पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि यह हमारी सभ्यता की धड़कन भी है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से हमारी नदियाँ और नहरें हमारी इस धरती की रगों की तरह बहती आई हैं, जिन्होंने इंसानी बस्तियों को सींचा भी है और उन्हें पाला भी है। लेकिन आज तरक्की की दौड़ में हम अपनी इस लाइफ लाइन्स को भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा, फैक्ट्रियों के रसायन और हमारी ही लापरवाही ने आज इन कलकल बहती धाराओं को प्रदूषित कर दिया। जब एक नदी या नहर मैली होती है तो सिर्फ पानी गंदा नहीं होता दोस्तों, बल्कि हमारा आने वाला कल, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और इस धरती का पूरा इकोसिस्टम बीमार पड़ जाता है। नदियों और नहरों को साफ करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, बल्कि हम सब का एक साझा फर्ज भी है। यह एक आंदोलन है अपनी जड़ों को, अपनी प्रकृति को और अपने खुद को बचाने का, क्योंकि साफ पानी ही साफ और सेहतमंद कल की बुनियाद है दोस्तों। और कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले तो कुदरत के रंगों को, रूठे हुए रंगों को भी वापस ला सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक खास बात हम आपको बताना चाहते हैं। तमिलनाडु के कुडालोर में बंकिम धम नहर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह दोस्तों, व्यापार और परिवहन की जीवन रेखा कही जाने वाली यह ऐतिहासिक नहर वक्त के थपेड़ों और इंसानी लापरवाही के कारण गंदगी और प्लास्टिक के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। 3 किलोमीटर का हिस्सा जो कभी कलकल बहता था, प्लास्टिक के बोझ तले दम तोड़ रहा था। लेकिन इसमें बदलाव की लहर भी आई और यह बदलाव की लहर तब शुरू हुई जब स्थानीय समाज और प्रशासन ने अपनी इस विरासत को बचाने का संकल्प लिया।
1: जी दोस्तों, 600 ग्रामीणों के अटूट श्रमदान और वन विभाग की दूरदर्शी सोच ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने न केवल नहर को प्लास्टिक मुक्त किया, बल्कि वहां मैंग्रोव के जंगलों की हरियाली भी लौटा दी। और आज इस नहर में पानी का प्रवाह फिर से तेज हुआ है और लौटती हुई मछलियां इस बात का सबूत हैं कि प्रकृति को सहेजने की एक छोटी सी कोशिश पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नया जीवन दे सकती है। दोस्तों, आज जब हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब कुडालोर का यह सफल मॉडल हमें बताता है कि समाधान सरकार की फाइलों में नहीं, बल्कि जन भागीदारी और प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता में छिपा है। लौटती हुई मछलियाँ और खिलती हरियाली इस बात की गवाह हैं कि अगर हम प्रकृति और उसका सम्मान लौटा दें तो वह हमें सुरक्षा और समृद्धि का वरदान देने में कभी पीछे नहीं हटती।
0: बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि यह छोटी सी लहर देश की दूसरी नदियों और नहरों के लिए भी एक नई सुबह का संदेश बनेगी। और यही थी आज के नमस्कार की खास बात।

जी दोस्तों, अब हम चलते हैं काम की बात की तरफ। अब गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, तो सभी माओं का यही रहेगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं कि वो उसके आगे की जीवन के लिए, भविष्य के लिए लाभकारी हो। तो इसके लिए हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे जो कि हमारी काम की बात में रहेगा। जी दोस्तों, अभी आजकल वर्तमान में कई तरह के ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोग्राम्स चलते हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। आप उन्हें हॉबी क्लासेस में भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुझे दिमाग में आता है, जो कि बच्चों की पढ़ाई से भी रिलेटेड है, अगर बच्चे 1.5 महीने की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें वे अगर ऐसा कार्य सीखें जो उनके आगे वापस जब छुट्टियाँ खुलेगी तो पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, तो वो है एक अबेकस उन्हें सिखाना। जो दोस्तों

एबेकस जो है वो एक प्राचीन गणना करने का एक उपकरण है जिसका उपयोग बच्चों को तेज और आसान तरीके से गणित सिखाने के लिए किया जाता है। क्या होता है एबेकस? तो यह हम आपको बता दें कि एबेकस एक लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसमें तार और उन पर छोटी छोटी गोल मणियां होती हैं और इन मणियों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके जोड़ घटाव गुणा और भाग किए जाते हैं। ये कैसे काम करता है? तो इसमें हर तार

0: क्योंकि ये ब्रेन को एक्टिव रखता है और मेमोरी को बढ़ाता है। इसके साथ ही उनकी एकाग्रता में भी बढ़ोतर होती है। बच्चा ध्यान लगाकर काम करना सीखता है और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो बच्चों में एक आत्मविश्वास जागता है। उनके मन से गणित का डर कम हो जाता है और मानसिक गणना जो वो करता है उससे बच्चे बिना कागज़ या कैलकुलेटर के हिसाब लगाना सीख जाते हैं। तो हुआ ना इंजॉय का इंजॉयमेंट, सीखना लर्निंग, और ऐसी लर्निंग जो उन्हें आगे अपने भविष्य में अपने दूसरे विषयों में भी उपयोगी साबित होती है। और ख़ास करके मैथ्स जैसा विषय, गणित जैसा विषय जिससे कि बच्चे दूर भागते हैं, डरते हैं, तो ये जो प्रोसेस रहेगा छुट्टियों में बच्चों को अभी का सिखाने का, इससे वे अपनी गणित भी मजबूत कर लेंगे और एक तरह से उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी।
1: जी हाँ दोस्तों, बच्चा तेजी से सही जवाब देने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी इससे बढ़ता है। वह गणित से डरता नहीं है बल्कि उसे पसंद करने लगता है। उसकी रचनात्मक सोच विकसित होती है। अबेकस बच्चों को सिर्फ रटने की बजाय समझकर सोचने की आदत देता है और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है वो भी मजबूत होती है। अबेकस का असर सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, विज्ञान में लॉजिक बेहतर होता है, इससे पढ़ाई में स्पीड बढ़ती है, याद करने की क्षमता भी मजबूत होती है और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन सामने आता है। दोस्तों तेज गणना और बेहतर एकाग्रता के कारण बच्चे समय पर पेपर पूरा कर लेते हैं और गलतियां कम करते हैं। मतलब तो यही है कि अबेकस ट्रेनिंग है जो बच्चों के लिए एक पूरा ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यह उन्हें तेज, आत्मविश्वासी और स्मार्ट बनाता है, खासकर गणित में।

0: दोस्तों, आज सोमवार है और सोमवार को सेगमेंट होता है विज्ञान विश्व। आज विज्ञान विश्व में हम बात कर रहे हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावनता का विज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पानी में उतरते हैं या किसी भारी वस्तु को पानी में डालते हैं तो हमें वह वस्तु हवा की तुलना में हल्की महसूस होती है। इस अनुभव के पीछे जो विज्ञान काम करता है उसे आर्कमिडीज का सिद्धांत ही कहते हैं। आर्कमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई चीज किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अगर सरल शब्दों में इसे समझा जाए तो अगर आप पानी में भरे टब में एक पत्थर डालते हैं तो पत्थर जितना पानी बाहर निकालेगा उस पानी का वजन ही पत्थर पर लगने वाला ऊपर की ओर का धक्का होगा। उत्प्लावक बल वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी वस्तु को तरल में तैरने में मदद करता है। और विस्थापित तरल जब किसी चीज होती है वो पानी में जाती है तो वह अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटा देती है, और उस हटाए गए पानी का आयतन उस चीज के डूबे हुए हिस्से के आयतन के बराबर होता है। और वस्तु कब तैरेगी और कब डूबेगी, अगर ये समझना है तो आर्कमिडीज का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें हैं जो पानी में कैसे काम करेगी। अगर डूबने की बात करें तो यह वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। मान लीजिए लोहे की कील ही है। और तैरने की बात की जाए तो अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वह तरल की तरह सतह पर या उसके अंदर तैरेगी। जैसे लकड़ी का एक डंडा ही समझ लीजिए, सतह पर कैसे आएगी? यदि उत्प्लावक बल है वो वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु ऊपर की ओर आएगी।
1: जी दोस्तों, वास्तविक जीवन में इसके उदाहरण को देखें तो जहाज और नावें इसके उदाहरण के रूप में मिलते हैं। लोहे का एक छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे से बना विशाल जहाज पानी पर तैरता रहता है। और इसका कारण यही है कि जहाज की बनावट ऐसी होती है कि वो अपने वजन से कहीं अधिक पानी विस्थापित करता है, जिससे उसे पर्याप्त उत्प्लावक बल मिलता है। पनडुब्बी की अगर बात करें तो पनडुब्बियों में विशेष टैंक होते हैं। जब इसमें पानी भरा जाता है तो पनडुब्बियां भारी होकर डूब जाती हैं, और जब पानी निकालकर हवा भर दी जाती है तो

वो हल्की होकर ऊपर आ जाती है। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें। दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत केवल भौतिकी का एक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का आधार है। चाहे वो समुद्र में तैरते विशाल जहाज हों या आकाश में उड़ते गर्म हवा के गुब्बारे, ये सिद्धांत हमें प्रकृति के संतुलन को समझने में मदद करता है।

दोस्तों, आज हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि है। उन्हें फिल्मों में माँ की शानदार भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की साथिन माँ हो या वास्तव की कठोर माँ, फिर या फिर दिल लगी की मालिकाना माँ हो, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने माँ का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान के कई फिल्मों में माँ की भूमिका है जो निभाई थी।

0: जी दोस्तों, आज के नमस्कार के अंक में इतना ही। मुझे यानी कि मनीषा जोशी बोरा को और मेरे साथ
1: और मैं चंद्रकला सुथार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्षों के गौरव में सफ़र के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 13 मई को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति सभागार जोधपुर में आयोजित सुगम संगीत संध्या स्वरोत्सव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। गायक कलाकार अनूप राज पुरोहित, आमिर हुसैन, संगत कलाकार राजन द्वारका, दीपक बोहरा और राशि बाहेती, मंच संचालन नेमीचंद और शैला माहेश्वरी।

0: में विराजमान है, जिसकी एक अनुकंपा से मनुष्य के कंठ में स्वर आता है और वहीं एक दृष्टि से शब्द में प्राण आ जाते हैं। उसी हंस वाहिनी को हम स्वरोत्सव की ये पहली सांस समर्पित करते हैं,
1: क्योंकि यह संध्या स्वर की है। यह संध्या उस आवाज की है जो न किसी दीवार से रुकती है, न किसी सरहद को मानती है। यह संध्या उस वाणी की है जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं।
0: और आकाशवाणी के जानिब से सजी है आज की ये सुरीली शाम, जिसके साक्षी बन रहे हैं माँ सरस्वती के वो तमाम उपासक, वो तमाम आवाजें जो ध्वनि तरंगों पर सवार होकर पहुंच रही है भारतवर्ष के हर कोने तक पिछले 90 वर्षों से।
1: और 90 वर्षों की इस गौरवमय यात्रा के उपलक्ष्य में देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और इसी कड़ी में आकाशवाणी जोधपुर के जानिब से सजी है ये सुगम संगीत संध्या स्वरोत्सव,
0: जहां स्वर वो दैवीय ध्वनि है जो ब्रह्मांड की आत्मा से उतरती है,
1: और उत्सव वो आनंद जिसे अकेले नहीं मनाया जा सकता।
0: ये उत्सव उस वाणी का है जिसे हम 90 साल से जी रहे हैं।
1: ये उत्सव उन सुरों का है जो हर भाषा से परे है।
0: ये उत्सव उस संगीत का है जो जोड़ता है दिलों को, पीढ़ियों को और संस्कृतियों को।
1: क्योंकि वाणी सिर्फ आवाज नहीं होती, वाणी वो सेतु है जो दो दिलों के बीच की दूरी को पल भर में मिटा देता है। वाणी वो दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है।
0: और जब ये वाणी प्रज्ञा से, अनुभव से, समर्पण से जुड़ जाती है तो केवल शब्द नहीं रहती बल्कि इतिहास बन जाती है।
1: और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लफ्ज वो नहीं जो सिर्फ कानों तक जाएं, लफ्ज वो नहीं जो सिर्फ कानों तक जाएं, लफ्ज वो हैं जो रूह से पर्दा उठाएं।
0: साथियों, आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के इस बृहस्पति सभागार में बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस वाणी को साधा है, जिन्होंने माइक्रोफोन के सामने बैठकर ना जाने कितनी पीढ़ियों को संगीत दिया, समाचार दिया, आनंद दिया, संस्कार दिया।
1: आप सबके लिए माँ सरस्वती की उपासना का वो श्लोक सिर्फ एक मात्र श्लोक नहीं था बल्कि एक मंत्र, एक जीवन शैली थी। ये आपकी जिंदगी की तर्जुमानी है, क्योंकि आप हैं आकाशवाणी की असली रूह, आप हैं इस संस्था की जड़ें, इस शजर की छाया।
0: आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं,
1: आपके समक्ष हम नतमस्तक हैं।
0: आकाशवाणी महज एक अदृश्य आवाज नहीं है बल्कि कलाकारों और साहित्यकारों की कला साधना में वरद हस्त बनकर उतरती है।
1: और आकाशवाणी ने सदा ही उदयीमान और नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान किया है। आज स्वरोत्सव की इस सुरीली सांझ में इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे बीच भजन की भक्ति लिए मौजूद हैं अनूप राज पुरोहित, और गजल की रूहानियत लेकर तशरीफ लाए हैं आमिर हुसैन।
0: किसी भी उत्सव

0: की शोभा उसके सुधी श्रोता, दर्शक और माननीय मेहमानों से बनती है। जी हाँ, ये एक बेहद खुशनसीब शाम है जिसमें हमारे बीच गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं एमएल गर्ग सर का, IGBSF राजस्थान फ्रंटियर। हमारे बीच है राजेंद्र नाहर, उप महानिदेशक महोदय एवं क्लस्टर प्रमुख, श्री राजेंद्र गांग, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी, संजय व्यास जी, राजेश लामरू जी, और इतना ही नहीं, आकाशवाणी परिवार के गणमान्य परिवारजनों के साथ साथ जोधपुर की संगीत और कला से जुड़ी महान हस्तियों का भी दर्शन इस दर्शक दीर्घा में कर पा रही हूँ। आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच हैं उस्ताद साबिर हुसैन साहब। आप आकाशवाणी से टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। आपका स्वागत करते हैं। इस कड़ी में आपका इस नाम में एक और नाम में जोड़ना चाहूंगी। जी हाँ, जोधपुर जिनकी आवाज से गूंजता है, पंडित राजेंद्र वैष्णव, और इस नाम से मैं जोड़ूंगी सुरमणि मारवाड़ रत्न पंडित राजेंद्र वैष्णव। हमारे बीच सितार की एक साधिका श्रीमती अरुणा माथुर विराजमान है। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी परिवार से ही वरिष्ठ प्रसारक श्री कालूराम परिहार, आपका भी इस मंच से और करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करते हैं।
1: और साहिबान कहते हैं कि दीपक बण जग देख लियो अणहद करे उजास, दीपक बण जग देख लियो अणहद करे उजास, देश दिवा धरती जुपे पड़ पड़ हो ये प्रकाश।
0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस ध्येय को सदैव सर्वोपरि मानने वाली ये राष्ट्रीय प्रसारक संस्था आकाशवाणी 90 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में जन जन के अंतर मन को ज्ञान की ज्योति से पल पल प्रकाशित करती आई है।
1: और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारा निवेदन है दीप प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय अतिथि गण महोदयों से कि आप मेहरबानी करके दीप प्रज्वलन की जो हमारी रवायत है, जो हमारी एक भारतीय संस्कृति की परंपरा है, उसे निभाएं। हम निवेदन करते हैं।
0: श्री राजेंद्र नाहर, उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख, कृपया आप पधारें। एमएल गर्ग सर, IGBSF राजस्थान फ्रंटियर, श्री राजेंद्र गांग, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी जोधपुर, श्री अनिल गोयल, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक आकाशवाणी जोधपुर, श्री संजय व्यास, कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी जोधपुर, श्री राजेश लामरोड, कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी जोधपुर, ये मंच आपको निवेदित करता है। साथ ही मेरा निवेदन,
1: श्री ज्ञान सिंह शेखावत साहब, परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्ष,
0: वनस्पति शास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इस परंपरा में सुरीली सांझ की शुरुआत में डॉक्टर अनूप राज पुरोहित से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंगलाचरण के द्वारा इस पावन क्षण में सहयोगी बनें।

0: बहुत बहुत आभार हमारे तमाम माननीय अतिथि गणों का, उन्होंने इस पल को और भी दिए की तरह रोशन कर दिया है और आज की ये सांझ हम सभी के लिए निश्चित तौर पर यादगार रहेगी।
1: आकाशवाणी भी एक दीपक ही तो है जो 90 साल से जल रहा है। हवाएं आई, वक्त बदला, जमाना बदला, लेकिन ये दीपक बुझा नहीं।
0: आज हम उसी अखंड ज्योति को नमन करते हुए इस शाम को और रोशन करते हैं।
1: जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।
0: और आज इस बृहस्पति सभागार भवन में खड़े होकर जब हम सामने नजर डालते हैं तो हमें नजर आ रहे हैं वो तमाम चेहरे, वो तमाम आवाजें, वो तमाम रूहें जिन्होंने वर्षों तक उस वाणी की तपस्या की है। आप वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ माइक्रोफोन के सामने कुछ अल्फाज नहीं कहे, बल्कि आपने पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने सम्मान में सभी हमारी उन खूबसूरत आवाजों के लिए बजा दीजिए।
1: और ऐसे दिग्गजों के सामने जिन्होंने आकाशवाणी को सींचा है, आज यहां मंच पर खड़े होकर बोलना हमारे लिए फक्र की बात है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। नमस्कार, मैं हूं शैला माहेश्वरी।
0: और नाचीज को नेमीचंद कहते हैं।
1: हम दोनों अपनी ओर से इस पूरे आयोजक परिवार की तरफ से आप सभी का इस बेहद खास और रूहानी शाम स्वरोत्सव में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं,
0: अभिनंदन करते हैं।
1: आज हम यहाँ एक बहुत बड़ा मुकाम मनाने को जमा हुए हैं। 90 साल, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, एक सदी मुकम्मल होने को है। जरा सोचिए, आकाशवाणी का ये 90 वर्षों का सफर सिर्फ एक सरकारी संस्था का सफर नहीं है, ये आजाद होते और फिर से अपने पैरों पर खड़े होते नए हिंदुस्तान की धड़कन का इतिहास है।
0: ये आकाशवाणी है, ये सिर्फ 3 लफ्ज नहीं है, ये वो आवाज जिसने देश को एक सूत्र में बांधा। खेतों में चलते किसान से लेकर सरहदों पर खड़े जवान तक, और घरों के आंगन में बैठी महिलाओं से लेकर चाय की थड़ी पर चर्चा करते बुजुर्गों तक। जब इंटरनेट की ये दुनिया नहीं थी, मोबाइल स्क्रीन का ये जाल नहीं था, तब से इस रेडियो तरंगों ने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा। आकाशवाणी ने हमें हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य और हमारे संगीत की असल कीमत समझाई।
1: और इसी शानदार 90 साल के सफरनामे का जश्न मनाने के लिए आज आकाशवाणी जोधपुर ने इस महफिल को सजाया है। इस कार्यक्रम का नाम है स्वरोत्सव, एक सुगम संगीत संध्या, क्योंकि जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तब सुर अपना असर, अपना जादू शुरू करते हैं।
0: और आज की इस शाम को हमने दो बेहद खूबसूरत लेकिन अलग अलग रंगों से सजाया है। एक तरफ हमारे पास भजन की वो आध्यात्मिक अनुभूति रहेगी जो सीधे इंसान को ईश्वर से जोड़ती है, तो दूसरी तरफ गजल की वो नजाकत जो इंसान को इंसान के जज्बे

0: बात से रूबरू करवाती है।
1: और इस बात से पर्दा हटाते हुए आप तक ये बात पहुंचा दूं कि हमारे बीच भजन की पावन सरिता बहाने के लिए मौजूद हैं अनुपराज पुरोहित। आपकी तालियां मैं जरूर चाहूंगी। और गजल की गहराई और उसके दर्द को अपनी आवाज देने के लिए तशरीफ लाए हैं आमिर हुसैन।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि कोई भी सुर बिना किसी संगत के अधूरा ही रहता है। इनके आवाज को मुकम्मल करने के लिए तबले पर थाप देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राजन द्वारका, और बांसुरी के सुरों से स्वरोत्सव की शान बढ़ाएंगे श्री दीपक बोहरा।
1: ये संगम एक ऐसा संगम होने वाला है जो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा।
0: मारवाड़ की ये शाम वैसे भी अपनी रंगीनियों और सुकून के लिए जानी जाती है, और जब इसमें गजल की चाशनी घुल जाए तो फिर क्या ही कहने। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही पर ये इल्जाम ही आए। गजल वो आईना है जिसमें दिल की अनकहे अल्फाज अपनी सूरत देखते हैं। गजल महज अल्फाजों का खेल नहीं बल्कि वो नजाकत है जो सीधे सुनने वालों की रूह में उतरती है, और इसी नजाकत इसी सुकून से हमें रूबरू कराने आ रहे हैं जनाब आमिर हुसैन साहब।
1: आपकी तालियों के बीच ये मंच आमंत्रित करता है स्वरोत्सव सुगम संगीत संध्या के इस पहले पायदान पर। आपके साथ मंच पर सुशोभित होंगे राजन द्वारका और दीपक बोहरा। जोधपुर सूर्य नगरी के ये युवा कलाकार आकाशवाणी एक बार फिर से अपनी उस परंपरा को निभाते हुए कि नवोदित कलाकारों को एक सुनहरा मंच प्रदान करना।
0: बिल्कुल, और उससे पहले कि इनकी आवाज और इनकी कला आप तक पहुंचे, हम इनका एक मुख्तसर सा परिचय आप तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: जी हाँ साथियों, आमिर हुसैन प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मी एक ऐसी आवाज जिन्होंने अपनी सांगीतिक यात्रा का आगाज ही आकाशवाणी के चुनमुन कार्यक्रम के जरिए किया, वो भी मात्र 8 वर्ष की आयु में। आप आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से ना सिर्फ गजल गायन में बी हाई ग्रेड के कलाकार हैं बल्कि सुगम संगीत तबला वादन में भी अनुमोदित कलाकार हैं। अल्पायु से ही संगीत की शिक्षा अपने पिता एवं गुरु उस्ताद श्री साबिर हुसैन खान द्वारा प्राप्त हुई, जो कि आज सभागार में हमारे बीच मौजूद हैं। साबिर हुसैन खान जो स्वयं आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के कलाकार हैं, राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर अपनी गजल गायकी का हुनर दिखा चुके आमिर हुसैन ने कई खिताब अपने नाम किए हैं। आप एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्तमान में संगीत शोधार्थी हैं।
0: और आमिर हुसैन साहब का साथ देने के लिए राजन द्वारका जी उपलब्ध हैं। संगीत की कोई भी महफिल ताल वाद्य के बिना अधूरी रहती है, और आज की शाम मंच पर तबला संगति कर रहे हैं राजन द्वारका साहब। आपके सबसे पहले गुरु आपके पिता श्री मदन द्वारका जी हैं, इसके बाद श्री पूनम द्वारका का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। न सिर्फ तबला संगति बल्कि सोलो तबला वादन में भी आप समान रूप से दक्षता रखते हैं, और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी आप तबला वादन करके अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। और इतना ही नहीं, कई वरिष्ठ कलाकारों के साथ तबला वादन का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ राजन द्वारका जी का हार्दिक स्वागत।
1: मंच पर एक और साज हम यहाँ देख पा रहे हैं, दीपक बोहरा। इस साज के साथ हमारे बीच आज एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बांसुरी पर अपने श्वासों को साधा है। आपने संगीत में एमए और विशारद किया है। आपकी बांसुरी वादन की प्रारंभिक शिक्षा पिता एवं गुरु श्री संजय बोहरा से हुई, तत्पश्चात प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत में आपकी विशेष रुचि है। वर्तमान में संगीत शिक्षण के साथ साथ विभिन्न मंचों पर आकर्षक प्रस्तुतियों द्वारा आपने विशेष पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल, तो आपके और संगीत के बीच की ये जो दीवार है वो यहीं हम हटाते हैं और जोरदार तालियों के साथ आपको सौंप रहे हैं जनाब आमिर हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम।
2: 90 वर्ष

आकाशवाणी के गौरव में 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो आकाशवाणी जोधपुर केंद्र द्वारा इस सुगम संगीत की संध्या सजाई गई है और इसमें बतौरे प्रस्तुति गायक के रूप में, गजल गायक के रूप में मुझे चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जोधपुर आकाशवाणी का। और आज की सभा में जैसा मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े गुणीजन, हमारे गुरुजन वगैरह सब विराजमान हैं, तो इनके सामने क्या ही गाना, बस इनके आशीर्वाद मिल जाए उससे ही थोड़ी सी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बतौर हाजिरी दो गज़ल अपनी कंपोजिशन पेश करूँगा और तबले पर मेरे साथ हैं राजन भाई जो कि बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, और बांसुरी पर भी दीपक भाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट। पहली गज़ल अदीम हाशमी साहब की गज़ल

बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये अब जो कंपोजिशन में गाने जा रहा हूँ, ये खास इसी कॉन्सर्ट के लिए अभी 2-3 दिन पहले कंपोज मैंने ही किए, और आप पहली ऑडियंस हैं इस गज़ल को, इस कंपोजिशन को सुनेंगे। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में सबसे पहली बार आप लोग इसको सुनने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बिल्कुल, क्या ही कहने हैं। आमिर साहब की इस प्रस्तुति ने तो इस बृहस्पति सभागार भवन में एक बहुत ही खूबसूरत समा जो है वो बांध के रखा है, और इन सुरों की जो खुमारी है और अल्फाजों की जो जादू है उसका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए।
1: पुनः धन्यवाद। और स्वरोत्सव सुगम संगीत संध्या, इसका जो अगला पायदान है, जी हाँ, भक्ति रस, एक ऐसा रस जो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच से वाकई ऊपर उठाता है या फिर अपने मन के भीतर ले जाता है। संगीत शब्दों की खोज में निकले प्रेम के समान है, संगीत प्रार्थना भी है और फल भी। भाव जब दिल से निकलकर स्वरों में पिरो दिए जाते हैं तो बोल बोल नहीं रहते, संगीत बन जाते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच आज की शाम के हमारे अगले कलाकार डॉक्टर अनूप राज पुरोहित को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही ये मंच निवेदित करता है राशि बाहिती और चिन्मय रामदेव को।
0: जब तक अनूप साहब मंच पर पधारे हैं, तब तक एक छोटा सा मुख्तसर सा परिचय उनका हम आप तक पहुंचा देते हैं। अनूप राज पुरोहित जोधपुर की एक ऐसी ही उभरती हुई शख्सियत हैं जो गायन और हारमोनियम वादन दोनों ही माध्यमों से स्वरों की साधना कर रहे हैं। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप शास्त्रीय गायन में बी हाई ग्रेड के कलाकार हैं।

और विशेष बात यह है कि और खास बात यह है कि केंद्रीय परीक्षण समिति द्वारा आपको उप शास्त्रीय हारमोनियम वादन में सीधा बी हाई ग्रेड प्रदान किया गया है। आपकी वाणी की मिठास और साक्षात इस बात को प्रमाणित करती है कि समय समय पर आपको गुरुजनों और गुणीजनों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिनमें पंडित राजेंद्र वैष्णव जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए, पंडित दत्ता क्षीरसागर, पंडित दीपक क्षीरसागर और पंडित सुधीर नायक का नाम अग्रणी लिया जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय गायन में युवा पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और मायड़

0: और गुणीजनों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिनमें पंडित राजेंद्र वैष्णव जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए, पंडित दत्ता क्षीरसागर, पंडित दीपक क्षीरसागर और पंडित सुधीर नायक का नाम अग्रणी लिया जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय गायन में युवा पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और मायड़ भाषा सम्मान भी आपके नाम है।
1: अगर बात करें आपकी प्रस्तुतियों की तो राग मांड पर आधारित एक श्रृंखला के तहत दुबई में आपकी प्रस्तुति हुई और कई शीर्ष कलाकारों के साथ हारमोनियम संगति का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है। साथियों, यहां आपको बता दूं कि मंच पर भजन गायन हेतु मुख्य कलाकार डॉक्टर अनूप राज पुरोहित, तबला पर पुनः आपका साथ दे रहे हैं राजन द्वारका, बांसुरी वादक के रूप में हमारे बीच हैं मंच पर दीपक बोहरा, तानपुरा संगति राशि बाहिती के द्वारा और सह गायन चिन्मय रामदेव का।
0: बिल्कुल, तो आइए अब बिना किसी और इंतजार के स्वरोत्सव की इस अगली और बेहद खूबसूरत सुरीली भक्ति प्रस्तुति के लिए आपको हम सौंप रहे हैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनूप राज पुरोहित और उनकी पूरी टीम।
2: सभी को मेरा प्रणाम। मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस पुनीत और पावन पर्व के उसका हिस्सा बन पाया और आकाशवाणी ने मुझे इस मंच पर अपनी हाजिरी देने के लिए मुझे काबिल समझा। मैं पूरी केंद्र के सारे अधिकारियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बड़ा विशेष दिन है कि मेरे गुरुवर मेरे सम्मुख विराजमान है, तो मेरे मुख से जो भी स्वर या वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो मेरे गुरु जी का है और जो भी मेरी कमियाँ हैं वो मेरे, आप क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। एक कबीर का पद आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

0: भक्त और भक्ति की पराकाष्ठा, उस परम शक्ति से तादात्म्य एकात्म। ये थे हमारे बीच युवा कलाकार डॉक्टर अनूप राज पुरोहित। मंच पर आपके साथ तबला वादन राजन द्वारका द्वारा, बांसुरी वादन दीपक बोहरा द्वारा, और साथ ही तानपुरा संगति राशि बाहिती, सहगायन चिन्मय रामदेव। कार्यक्रम के पहले पायदान में आमिर हुसैन गजल गायन की प्रस्तुति के साथ हमारे बीच थे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, यही तो आकाशवाणी है। हम दिखते नहीं पर हम हैं, आप सभी के दिलों में हैं, हम आकाशवाणी है। आज इस सभागार में हमारे बीच डॉक्टर प्रियंका गोदारा, चेयरपर्सन SLBS एजुकेशन ग्रुप, इस मंच से आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जिस जोश के साथ प्रातः अपनी सभा शुरू करती है, उसी गरिमा के साथ अपनी सभा का समापन करती है, अगले दिन फिर मिलने के वादे के साथ। तो बिल्कुल उसी तरह हमारी आकाशवाणी की यात्रा शून्य दर शून्य बढ़ती जाएगी,
1: और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि मुद्दतों याद रहेगी ये रूहानी महफिल, मुद्दतों याद रहेगी ये रूहानी महफिल, सुरों के संबंध में आज जो मिला है साहिल। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं नेमी चंद और मेरे साथ
0: मैं शैला, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी स्थापना की 90 वर्षों की गौरवमय सफर के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष दिनांक 13 मई को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति सभागार जोधपुर में आयोजित सुगम संगीत संध्या स्वरोत्सव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। गायक कलाकार थे अनूप राज पुरोहित भजन, आमिर हुसैन गजल, संगत कलाकारों में साथिया राजन द्वारका तबला संगत में, दीपक बोहरा बांसुरी वादक, राशि बाहेती तानपुरा संगत, उद्घोषक थे हमारे साथी नेहमी चंद और शैला माहेश्वरी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11:15 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत में आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म रेफ्यूजी से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है

0: है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चाहत से, जिसे गाया है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा निदा फाजली ने और तर्ज अनु मलिक की।

श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जिसे गाया है कुमार शानू, एलिसा चिनॉय और सपना मुखर्जी ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये गीत, फिल्म कभी खुशी कभी गम से। आवाजें इसमें दी है कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए आपको सुनवाते हैं ये आखिरी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, इस फिल्म गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली पेशकश, लोक संगीत। लोक संगीत में ये पहला

श्रोताओं, इस लोक रंग के साथ ही लोक संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम से पहले लेते हैं ये कम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई प्रमुख रचनाएं।

0: श्रोताओ, आज सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे पंकज उदास की गाई हुई कुछ प्रमुख रचनाएं। अब इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यह स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की। साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार

0: की पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलूम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहां पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुंचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइयों की कर हो, खेती बाड़ी जी का काम काज है वे चाल रहा है, साथ साथ दोपहर जी को टाइम है वो भी होने लागो है। घरों आप भात भातरी चीजा बनान लाया हा, गर्मी पड़े तो दही भी लाया हा, राबड़ी भी लाया हा, हाथे कांदो है, बढ़िया हरी सब्जी बीजी है और सांगरिया जी की है ए भी बढ़िया लागी है, तो सांगरिया की सब्जियां केर आया है तो केरा की सब्जियां कहीं कहना सा बढ़िया। देखो जिमन जी को है पौष्टिक है और देसी जी को व्यंजन है वो आप जिमा तो भात भातरा जी का रोग है ए भी नहीं लगे। इन रहते आते किसान भाई आपरे खेतर महीने जी की फसल ले रखी है, उन्हारा महीने भी रोगा रोजी को नियंत्रण है वो टेमो टेम आपरे कर रहे है और साथ है किन तरह से किसान भाई फसलारी जी की पैदावार है विन बढ़ा सके और अबारी जरूरत मैंने आ है के रसायन रो प्रयोग कम करता थका जी की अपनी देसी विद्या है अपने जी की जैविक खेती है उनने किसान भाई बड़ा वो दे रिया है। किसान भैया आज जानकारी देवा आपने के जैविक खेती रे वास्ते सुपर कम्पोस्ट की कर आप बना सका। सुपर कम्पोस्ट एक तरह की जैविक खाद है जो सुपर

फास्फेट खाद मैंने मिलियोड़ा जी का जैविक पदार्थ है जीव आप बात करा पेड़ पौधा री पत्तियां है गोबर है इनारे अपघटन सु आ तैयार होया करे और जैविक खेती रा जी का सीर रूप सु जी का घटक है उनरा मैंने सुपर कम्पोस्ट रा जी का लाभ है वह बहुत मात्रा मैंने मिलिया करे। सुपर कम्पोस्ट टिकाऊ खेती रे वास्ते बहुत ही सस्ती और सरल विधि सु आप बना सका जी की आ जैविक खाद है। सुपर कम्पोस्ट रे उपयोग सु मिट्टी री जी की जल धारण री जी की क्षमता है आ बढ़ जाया करे। बारिश रे बगत में वे तो खूब सारो पानी जी को है और जमीन में जावे और जमीन मैंने मिट्टी रे मैंने जी की नमी है आ बढ़ोड़ी रिया करे। इनरे सागे सागे किसान भाई सिंचाई करे तो इन सिंचाई रो जी को पानी है वो भी ज्यादा अवशोषित मिट्टी रे मैंने होवे और नमी जी की है वह बढ़ोड़ी रहे। सुपर कम्पोस्ट रे उपयोग सु खेत रे मैंने खरपतवार और जी की दीमक उदय है इनरो जी को प्रकोप है ओ बहुत कम होया करे। इनरे हाथे आते इन खाद रे मैंने गोबरी खाद री तुलना रे मैंने अधिक मात्रा रे मैंने पोषक तत्व भी मिलिया करे। मिट्टी री भौतिक दशा सुधरे इनरे हाथे हाथे जी को वायु रो जी को संचार है मिट्टी रे मैंने ओ भी बढ़िया करे। सुपर कम्पोस्ट रो उपयोग सु किसान भाई फसल री बढ़िया और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। हम बात आवे के भाई लाभ री बात आप जानकारी ले रिया तो हमें बनौनी जी की विधि है आ कहेंगे किसान भाई सुपर कम्पोस्ट बनौने वास्ते 12x5x3 फुट रोजी को एक गहरो खाडो जिन्हें आप गड्ढो कहवा वो आपने तैयार करना चीज है। खेतरा जी का वनस्पति कचरा है इनरे हाथे हाथे अपने जी का जिनौर है दाऊपित है उनरा जी का गोबर है वे 6 इंच मोटी परत बिछा दा और उनरे ऊपर सुपर फास्फेट पाउडर अपने भुरुकनो चाहिए और फाचो एक दान वनस्पति कचरे जी की परत है आ फाची लगानी चाहिए। सुपर फास्फेट की परत लगावा और गड्ढा माते 1 ले 1.5 फुट ऊंचाई तई भरनियर बाद रमेने भरना आप पचे आप बढ़िया मिट्टी आप ढक दा और नमी अपने बनान राखनी है और गर्मिया रे मौसम रे महीने 15 दिन लेर 20 दिन तई जी को पानी रो छिड़काव है वो आपने करना है। 3-4 महीना रे महीने वनस्पति कचरो बहुत ही बढ़िया तरह सु सड़ गड़परो और बढ़िया सुपर कम्पोस्ट तैयार कर दिया करे जिनसु खेत रे महीने जुतई पहला आप खेत रे महीने बिखेरा इन जैविक खाद ने और सुपर कम्पोस्ट रे महीने गोबर री खाद री तुलना रे महीने हल्ली मात्रा रे महीने फास्फोरस और जी का दूजा पोषक तत्व है होया करे। किसान भाया आ ही जानकारी जैविक खेती रे वास्ते सुपर कम्पोस्ट किकर आपा बना सका। कृषि जगत कार्यक्रम रो टेम पूरो वेरियो है। दिनेश राणे जाने शीख दिराओ राम राम।

किसान साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 564.97 मीटर और 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1:15 हुए हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ग्रामीण महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम गणगौर।

0: जेठ री तपती दुपहरी माथा पर चढ़ेड़ो तप तो सूरज और बढ़ती लू एड़ो लागे जिया धरती तातो तवो बन गई। और एड़ी कड़कती धूप में जो ताती हवा चाले तो जीव है जो को कड़प उठे। पर ई ताती दुपहरी ने ठंडी करण सारू आपा कने दो चीजा है, एक तो है कालजा ने ठंडक देवनाली राबड़ी छाछ और दूजो है अपनी ई मायड़ बोली रो मीठो रसरंग कार्यक्रम गणगौर। और आज रो गणगौर कार्यक्रम लेर मैं आपरे साथे आपरी रेडियो सखी कोमल राठौड़। और आज मारे साथे है
1: आज मैं हूँ कोमल राठौड़ रे सागे ममता राजपुरोहित।
0: तो
1: गणगौर सरीखी सगली सखिया रो घणी मान स्वागत है। आपरी दोई सखिया रो अभिनंदन स्वीकार करो। और आप चाहिए तो जो मनमोहनो कार्यक्रम है बिरमायने गीत संगीत और जो मायड़ भाषा है बिनी चर्चा रो आप आनंद उठाओ। और एक और

0: जो खास पर्व अबार चल रही हो कोमल जी, कि आप बात करी जेठ महीना री, इन बार जो जेठ है बिनो जो दिन है वे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपा काल सु पुरुषोत्तम मास रो स्वागत करिया हूँ, और पुरुषोत्तम मास जो है जो धर्म री, भक्ति री और गीत अपने पूजा पाठ और भगवान री आराधना रो सुरीलो संगम ले रहा है। और आज आपा इन कार्यक्रम रे माने अपने सखिया ने बताऊं कि इन जो समय है वो अधिक मास इन मायने आपा जो भी पूजा पाठ करा या जो भी दान पुण्य करा विनो फल जो है वो घना गुणा बढ़न आपा ने मिलिया करे। तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत करा गीत संगीतों।
1: बिल्कुल।

0: मायड़ भाषा मोवणी ज्यू मोत्या रोहार बिन भाषा रे भायला सूनो लागे थार।
1: बिल्कुल कासा संघर्ष रे बाद अपनी राजस्थानी भाषा ने शिक्षा रे क्षेत्र रे मायने जगह मिली है और आजकल देख भी रही हाँ कि राजस्थानी भाषा है जो कि केवल घर चूल्हा चौका या चौपाल तक ही सीमित कोनी बल्कि आ रोजगार में या साहित्य में आधुनिक तकनीक का मंच माथे पर भी आप देख रहे हैं कि छारी है और जकी बस अपन हिवड़ा में बस्ती बाब पोथिया में भी गूंज रही है और अब इन सु टाबरा ने अपनी संस्कृति रो जो ज्ञान है बुजर सु मिलेला और बिना राजस्थानी सिर्फ बोली कोनी आ तो अपना अपना संस्कार है अपनी रीत प्रीत है अपने पुरखा रो एक अनमोल आशीर्वाद आशीर्वाद है जो कि आशीर्वाद है जो कोई भाषा री मिठास अगर देख नहीं भी वह तो कभी आप गांव री चौपाल माथे बैठ रहे देखो बडेरे री बाता जकी है बाप सुन जो कभी माँ रे हाथ री बाजरी री रोटी काचरी री चटनी रे साथे जीमो सा पधो सा पधारो सा ओ है थे जो को आप आंखे जकी बोली है बिर मायने आप।

0: बिल्कुल 18 लोग, अरे बोली तो प्यारी है ही, साथ ही साथ है, देखो 18 लोग भी प्यारा है और 18 जगह भी, 18 की जगह भी प्यारी है। और बात अगर 18 इतिहास री करा तो इतिहास री जकी चीजें हैं बेबी, अपन देखने ने घणो ही मन करे। और तेज दुनिया में लोग है जका अठे देखने ने भी आवे, क्योंकि वाने है जकी चीजें हैं जकी चौखी भी घनी लागे। और ये जत्ती भी चीजें हैं आने संजो राखे 18 म्यूजियम, 18 संग्रहालय। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, सगला मना रही है यहाँ। तो ममता, अपने दिमाग में सुनते ही आई बात आवे, आपका संग्रहालय के बारे में सुनियो तो दिमाग में एक ही चीज आई कि इमारता, काचरा, बक्सा, बामे बंद, राजा महाराजा री तलवारा और सजेड़ा मुकुट है, बे सब अपने याद आ जावे।
1: बिल्कुल
0: और ये जो कि यादा है वासु जुड़िया धरोहर है, ये सामान सब ने संग्रहालय जो को है वो याद रे तौर पर सहज तो मिलियो है, पर एक म्यूजियम जो को सबसे बड़ो है, सबसे अनोखो भी है, और वो है कठे ना कठे आपनो गाँव। और एक जीतो जातो जागतो संग्रहालय जो को है वो आपा ने कह सका, क्योंकि आपनी दादी नानी रे हाथरू बुनियोड़ी जकी दरी है, कोना रे मायने रखेड़ी जकी मिट्टी री कोठी है, पीतल रा बड़ा बर्तन है, खेती रा पुराना औजार है, कुआसू पानी खींचन वाली चरस है, इस सगली चीजों में दादा परदादा रो पसीनो है। और अपनी संस्कृति जकी है अब आटे छिपेड़ी है, ये केवल चीजा को नहीं, ये अपनी पुरखरी जकी तकनीक है बा है।
1: बिल्कुल आप कोमल जी बिल्कुल सही बात करी है कि संग्रहालय भले कोई भी तरह रो होवे और संग्रह भले कोई भी तरीके री चीजा रो होवे तो वो अपने इतिहास, कला और संस्कृति रो जीवंत केंद्र है।
0: बिल्कुल
1: ए अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने सहेजन राखे है और अपना जो पूर्वज है बिहारी जो जीवन शैली थी, जो कला है थी और जो विज्ञान है तो वे आपते ही पुगावे है। देखो एक आ भी चीज है कि संग्रहालय खाली देखन भूल जावन री चीज नहीं है। संग्रहालय अपने खासी चीजा सिखाया करे। एक तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, पण यारो एक संस्कृति रो संरक्षण रो जो काम है ब्याहू आपा शिक्षा अनुसंधान अन शोध रो काम भी आप ले सको हो। दूसरी बात कि जो पर्यटन है और जो अर्थव्यवस्था है बिहार मायने भी यह खूब सहायक है। और जो संस्कृति है बिना आप देखा तो और भी समझ में आवेला कि जो पुराना लोग है था या जो गांव है था या जो रहवास है तो वे सामाजिक एकता और समरसता किन तरिया रागता, वे सागे रेन भविष्य मायने आगे बढ़न की प्रक्रिया की कर जारी रागता।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल तो जो भी संग्रहालय है बिना जद आप देखो तो और जरूर सोच निकल जो कि आज बिन संग्रहालय में आपा कहीं एडो विशेष देखियो जो कि आपने भविष्य एक नई सोच

0: સાથે આગેલેર ચાલે હે.
1: बिल्कुल, तो आपा सबा ने मिलर वही संकल्प लेना चाहिए कि आपने गांव में जकी भी पुरानी पारंपरिक चीजा है वाने संभाल रखो और आवन वाली पीढ़ी वास्ते सहेजो, क्योंकि जका लोग आपरी विरासत ने भूलता जा रहा है वे आपरी विरासत सुजुड़ा रहे।

0: सखियों, हर बार इन कार्यक्रम रे मायने माणी एक विशेष कोशिश रहे है कि कोई कोई अड़ी शख्सियत हूँ आपने मिलावा या बियारी बात सुनावा जो कि आपारा सबारे मन रे मायने एक विशेष भावना, एक जोश पैदा करे कि जीवन में आपारे खने जो भी कला है बेने आप आगे तय के कर पहुँचावा और बिन कला ने आपारा जीवन रो मुख्य आधार बना अन की कर आपा कोई कोई फायदो अपना परिवार ने या अपना समाज ने पहुंचा सका। तो इनी सोच ने आगे ले जाता आज अपना स्टूडियो रे मायने फोन रे माध्यम से आपा एक विशेष कला डिजाइनर जो है सुभद्रा जी अहिर जो कि कच्छ रा जिकड़ी गांव में रहे और खूब बढ़िया कशीदाकारी रो काम कच्छी कशीदाकारी रो काम है कर रिया है। तो आज सुभद्रा जी सू आपरी बात आप ते पहुंचा वाला सुभद्रा जी री बातचीत जो कि बातचीत करेला कोमल जी कोमल राठौड़ तो पहुंचावा आप ते इन विशेष बातचीत रो अंश
1: किया करे कि कला जकी हुए बा पहचान जी मोहताज कोनी हुए और जद हुनर सुई धागारे सहारे कपड़ा माथे उतरे तो एक पूरी संस्कृति बोल उठे और एक ऐडी शख्सियत जका सुई धागारे जरिए आपरी एक अलग पहचान बनाई जका गुजरात रा भुज यानी कच्छ रे जिकड़ी गांव सु आपने साथे फोन रे माध्यम सु जुड़िया है जका आज कच्छ री सदियों पुरानी पारंपरिक हाथरी कशीदाकारी मिरर वर्क और आहिर कला ने देश विदेश ने कोना कोना तक पहुंचा रिया है। तो चलो आपने मिलावा ग्रामीण महिला शिल्पकार उद्यमी

0: सुभद्रा जी सु। तो सुभद्रा जी, आप रो जोधपुर आकाशवाणी रा एक घनघोर कार्यक्रम में घने ही है थरक सु स्वागत और राम राम।
1: राम राम जी, खूब खूब धन्यवाद आपका।
0: तो सुभद्रा जी, कचरी मिट्टी तो बिया ही रंगा और कलारे वास्ते मशहूर है, तो सबसे पहले श्रोतावा ने वो बताओ कि सुई धागा और इबारी कशीदा कारी सु आप रो और रिश्तो है, वो कद और किया शुरू हुई हो और ओ हुनर है आप किर कनु सीखियो।
1: हाँ, आपने सही बताया, कच्छ की कला तो वैसे भी मशहूर है पहले से ही, और मैं भी बचपन से ही ऐसे अपने मम्मी या दादी या बड़ी बहनों से ये देखती आ रही थी कला। वो सुई और धागों से कुछ अलग अलग नई नई डिजाइनें बनाते थे। तो शुरुआत में तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या बना रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखकर। फिर धीरे धीरे मुझे जैसे समझ आया, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टाके पहले सीखे, फिर थोड़े बड़े बड़े सीखे, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सब टाके अपने मम्मी दादी बहनों से सीखे।
0: बिल्कुल, और
1: ऐसे ही शुरुआत हुई थी हमारी।
0: तो बिल्कुल, आज की कच्ची कशीदाकारी है ओ जो को आप काम कर रहे हो, ओ किन तरीका सु करियो जावे, इनरी जो की विशेषता है बा काई है?
1: ये जो कच्ची कला है वो सुई और धागों से कपड़ों पे अलग अलग रंग से बनाया जाता है, और इसमें ज्यादातर उसके ऊपर फूल की डिजाइन है या फिर पोपट की डिजाइन है, मोर की डिजाइन है, मतलब जो आसपास जो चीजें देखती है, हम जैसे डूंगर देखते हैं, पानी भरती महिला देखते हैं, पोपट देखते हैं, जो भी पहले लोग जैसे देखते थे, तो वही वही डिजाइन उन्होंने डायरेक्ट कपड़े पर बनाते थे, तो आज भी वही डिजाइन चली आ रही है।
0: बिल्कुल, और आप जका है चीजें बनाया करो, तो किन किन तरह की चीजें हैं जो की कला के माध्यम आप बनाओ?
1: हम ज्यादातर चनिया चोली बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि बहुत फेमस है, तो नवरात्रि के लिए हम चनिया चोली बनाते हैं, फिर ब्लाउज होता है रेगुलर में पहनने के लिए, फिर घर को सजाने के लिए तोरण होते हैं, चाकड़े होते हैं, ओछड़ होते हैं, कुशन कवर होते हैं, फिर पहनने की चीजों में धोतियां धोती होती है, केड़िया होता है, टोपी होती है, उस तरह की चीजें हम बनाते हैं।
0: बिल्कुल, आप देखो काच और सुई धागों वो काम बनाओ तो हाथरो काम भी टाइम तो मांगे, धैर्य भी मांगे, और जब आप इन्हें साधारण कपड़ा माते और जका बारीक काच लगाओ धागा पिरो, तो एक पूरो सूट या के दो या साड़ी या लेंगो कितक दिन में बनर तैयार हो जावे, इरमा इन मेहनत है जकी कितनी लागे?
1: हाँ, भरत काम ये हाथ से बना हुआ होता है, तो समय तो बहुत मांगता है ये। हमें छोटी भी चीज अगर बनानी है तो कम से कम हम 15 दिन तो लग ही जाते हैं, और अगर बड़ी चीज कोई की बात करे, जैसे मुझे चनिया चोली रेडी करना है, तो मुझे सिर्फ चनिए में ही 6 महीने देने पड़ते हैं, और फिर उसके ब्लाउज के अलग महीने, 2 महीने उनके लग जाते हैं, दुपट्टा का 1 महीना लग जाता है। तो अगर अच्छे से एक चनिया चोली फुल वर्क वाले बनाने हैं तो घाटा घाटा या मोटा मोटा 1 साल जितना समय लग जाता है।
0: बिल्कुल, काफी समय आपने लाग जावे, इरो मतलब वो है कि इरमाई ने बहुत ही मेहनत आपने देनी पड़े।
1: हाँ जी, मेहनत तो बहुत लगती है इनमें।
0: बिल्कुल, और वो काम आज जी लेवल माते आप कर रिया हो, विने देखता देखा कई और महिलाओं ने भी आप सिखाया होला, रोजगार दिया होला, तो आप रे कने कितनी बहना है जो की काम करे?
1: हमारे पास अभी 50 से 60 बहने हैं जो साथ में मिलकर काम करती है।
0: और आप सोशल मीडिया माते भी आज आपकी कला ने पूरी दुनिया देख रही है, तो ये सोशल मीडिया से आपरा बिजनेस ने बढ़ावन रे मायने या नयो ग्राहक ढूंढन में आपने कितनी मदद मिली है? कोई बड़ो शहर सु या फिर विदेश सु भी आपरे कने ऑर्डर आवे है की?
1: सोशल मीडिया ने तो हमें इस काम के लिए बहुत मदद की है। शुरुआत में एक भूत के छोटे गाँव से शुरू हुआ था यह सफर, और सोशल मीडिया की वजह से आज हमारी ये कला है जो वो देश विदेश में ये सब लोग देखते हैं, और उसमें जो मोबाइल नंबर या होता है तो वो हमें डायरेक्ट ही संपर्क कर लेते हैं, और हमें ऑर्डर भी मिलता है ज्यादा इनसे, और हमारी कला को मान सम्मान भी मिलता है। तो सोशल मीडिया से हमें एक अलग पहचान मिली है, हमारी कला को एक पहचान मिली है। हाँ जी, पहले हम सिर्फ गुजरात में या आसपास के जो जगह थी वहीं पर ही अपना सामान बेचते थे, और आज तो हम मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, राजस्थान सब जगह पर और देश विदेश में भी हम अपना सामान बेचते हैं। ये जो गांव की कला है वो पूरे विश्व में सोशल मीडिया के जरिए फैल गई है।
0: बिल्कुल सा, सोशल मीडिया की वजह से फैली भी है, और देखो आप रे आज की कला है इन्हें जीआई टैग भी मिलो है, तो इस जीआई टैग से आप रे रोजगार ने कई लाभ मिले है?
1: हाँ, हमारी कला तो ये सदियों से आ रही है, पर जब से ये जीआई टैग मिला है

0: से ज्यादा लोग इस कला को जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको पहनना भी पसंद कर रहे हैं। तो जीआई टैग से हमें बहुत फायदा मिला है, हमारी बिक्री में भी बहुत फायदा मिला है इनसे।
1: बिल्कुल। और ये पारंपरिक कला ने जीवित रखने वास्ते कई कई प्रयास आप अबार कर रहे हो, क्योंकि देखो कंप्यूटर मोबाइल रो टेम है अबार, और लड़कियां जकी है बे डिजिटल युग रे हिसाब से और भी कई तरह रा काम करे, तो आप रे गांव री जकी लड़कियां हैं बे ये पारंपरिक सुई धागा री कला सीखने में रुचि दिखा रही है कई।
0: हाँ जी, आज की नई पीढ़ी तो मोबाइल कंप्यूटर के दौर में जी रही है, लेकिन हमारे घर गाँव है ना, वो कई लड़कियां आज भी अपनी परंपरागत सुई धागे की कला को सीखने की रुचि दिखा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे कला को सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि अपनी पहचान और रोजगार के अवसर के रूप में भी वो देखती है। उन्हें यहाँ समझ आता है कि हमारी कच्ची कला का सिर्फ कपड़ा पर किया काम नहीं है, पर महिला उससे आत्मनिर्भर भी बन रही है।
1: बिल्कुल। और कच्ची आज की कशीदा कारी है आप बहुत भारी भी हुए घनी भी हुए, तो आप इनमें किन तरह रा जका फैब्रिक यानी कपड़ा रो इस्तेमाल करिया करो जका आज की कशीदा कारी आ सब सुंदर हुए और टिकाऊ भी हुए।
0: हम ज्यादातर जो हमारे आसपास, जैसे हम कच्छ में रहते हैं तो आसपास के गांव में जो हाथ से वर्णन काम होता है, वर्णन काम का कपड़ा ही ज्यादातर यूज करता है जो हाथ से बना हुआ होता है, और या फिर एकदम प्योर कॉटन यूज करते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो लंबे समय तक टिका रहे, क्योंकि हमें एक साल तक एक ही कपड़े में बार बार सुई करनी पड़ती है। तो अगर कमजोर कपड़ा हुआ तो सुई मारने से ही वो फट जाता है या टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: पर हमें भरत काम के लिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा चाहिए, एकदम पतले कपड़े पर नहीं बन पाता ये काम, इसलिए कपड़ा हम बहुत ही अच्छा देखते हैं कि ज्यादातर हाथ से बनाया हुआ हो या फिर मोटा हो, और जिसका कलर ना निकले वो चीजें हम बहुत ध्यान रखते हैं इनमें।
1: बिल्कुल। और आपना जितना भी श्रोता है इन टाइम रेडियो सुन रहा है और हाथसू कशीदा करी करेड़ा कपड़ा पहनना पहनना पसंद करे, तो वाने आप काई सलाह देनी चाहो कि बे हैंडमेड कपड़ा रो जो को सार संभाल है बे किया कर सके ताकि वारी चमक है जो कि सालों साल बने डी रहे।
0: हैंडमेड का जो कपड़ा होता है उसमें अलग अलग धागे यूज किए होते हैं, ज्यादातर हम जो भी कस्टमर खरीदते हैं उसको वही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्राई क्लीन ही करें, क्योंकि जो पुराने पैच लगाए हुए होते हैं कपड़े जो, तो उसमें कोई अगर एक भी धागा का कलर छूटता है तो पूरा पीस खराब हो जाता है वो। अभी तो हम जो नए आइटम बनाते हैं उसमें उस तरह के धागे यूज करते हैं कि उसके कलर ना छूटे या मिरर उसका सालों साल तक खराब ना हो, पर सबसे पहले तो हम ड्राई क्लीन का ही उनको कहते हैं। पर अभी जो आइटम नहीं बनाते हैं उसको हम नॉर्मल पानी से धो सकते हैं बिना शैम्पू या सिर्फ पानी से, या मशीन वॉश का भी मना कर रहे हैं, आप नॉर्मल पानी से धोइए और फिर बिना धूप के ऐसे घर में या पंखे के नीचे आप सुखा देते हैं, उसका ज्यादा समय तक वो टिका रहता है।
1: आप रे बट कच्छ रे मायने हर साल रण उत्सव भी हुए, तो विन टेम आपरा काम और बिक्री में कितो कुछ आले जो को देखने मिले।
0: कच्छ में होने वाला जो रण उत्सव है वो हमारे लिए बहुत खास समय होता है। इस दौरान देश विदेश में हजारों पर्यटक कच्छ में संस्कृति, संगीत और हस्तकला की परंपरा को देखने आते हैं, और उनमें से कई लोग हमारे गांव झिकड़ी में भी पहुंचते हैं। यहाँ पर्यटन जो गांव में है होता है, हाथ का जो होता है हस्तकला, वो अपनी आंखों से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो उन्होंने वो देखा होता है, पर अपने आंखों से जो देखते हैं तो उसको बहुत ही अलग अनुभव होता है, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ वो कई लोग सीखने भी आते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर सीखने भी आते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, और अलग अलग टांके जो होते हैं वो सीखते हैं, और अपने जो कि फिर वो है कोर्स है उसमें वो टांकों का वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसी भी सीजन में कुछ कुछ कस्टमर आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, पर रण उत्सव के समय में यहाँ कच्छ में टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उससे हमारी बिक्री में भी बहुत फायदा होता है।
1: बिल्कुल। और आप रही काम ने इतनी ऊंचाइयां तक लेर आप गया हो, इनके वास्ते आपने कई सम्मान और पुरस्कार भी आपने मिलिया वेला।
0: हमें बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड मिला है यहाँ, बाकी गवर्नमेंट की वजह तो नहीं मिला है अभी तक। हाँ जी, पर जो आसपास के विस्तार से होते हैं कला को लेकर पुरस्कार तो वो मिले हैं हमें।
1: तो बिल्कुल आपरी मेहनत ने देखता था कि आपने एक दिन जरूर बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलेला। आपरी मेहनत है जो कि यही जारी रख जो, तो सुभद्रा जी, आप चलता चलता आकाशवाणी रा श्रोतावां ने और महिलावां ने जकी आपरा हुनर ने खुदरी

0: बिल्कुल, आपरी मेहनत ने देखता था का आपने एक दिन जरूर बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलेला। आपरी मेहनत है जकी यही जारी रख जो। तो सुभद्रा जी, आप चलता चलता आकाशवाणी रा श्रोतावा ने और महिलावा ने जकी आपरा हुनर ने खुदरी पहचान बनानी चाहवे वा ने आप काय कहनी चाहोला?
1: बस मैं तो यही कहूंगी कि अगर आगे बढ़ना हो तो अपने घर से, अपने गांव से भी आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास भी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर पहचान बनानी हो या कुछ करना हो तो हम गांव से भी कर सकते हैं। हमारे पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ हमारी ये कला थी, पर हमने ये सोचा कि इस कला जो हमें इतनी पसंद आ रही है वो दूसरे लोगों को भी ये इतनी पसंद आएगी। तो धीरे धीरे इनका फोटो हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, कहीं कस्टम ऑर्डर भी आते हैं अभी और बड़े बड़े भी ऑर्डर आते हैं, तो हमारा ये रोजगार चलता है। हमारा 50-60 बहनों का जो ग्रुप है उसका काम इस भरत कला से ही चलता है, तो शुरुआत कहीं से भी हम कर सकते हैं।
0: तो बिल्कुल सुभद्रा जी, आपरी बात सुनर आपरो काम देकर यहाँ लागे कि अगर इरादा मजबूत हुए तो सुई री नोक धागा रा एक टुकड़ा सु भी अपनी तकदीर रा खूबसूरत लिबास आपा बुन सका हाँ। तो
1: हाँ,
0: सुभद्रा
1: सही
0: जी,
1: बात है।
0: आपरो बहुत बहुत आभार कि आज आप आपरे हुनर री, आपरे इस सफर री, आत्मनिर्भरता री कहानी सभा तक पहुंचाई। आप सुसीख लेर बहुत सा लोग भी सफलता री सीढ़ी चढ़ेला और आगे भी बढ़ेला। तो आज आपरो कीमती भगत निकालर आकाशवाणी सु जुड़िया इंद्र वास्ते पूरा आकाशवाणी परिवार री तरफ सुभद्रा जी आपरो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो सखियो, आप आबार सुन रिया था कच्छी कशीदाकार सुभद्रा अहिर जी कोमल राठौड़ री बातचीत। और अब है आप ते पुगावा और मीठो सुगीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो ममता जी आपने पता है आज जो को दिन है वो अपने वास्ते बहुत ही गौरव रो दिन है, क्योंकि आज 18 मई और पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस है जो को भी आज मनावा, क्योंकि आज रे दिन ही आपनो जो को पहलो परमाणु परीक्षण है वो करियो गयो, जिन्हें आप पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस रे रूप में जाना ही हा। और इन दिन है जो को गुप्त मिशन रो जो को कोड नेम हो वो हो स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि भी दिन ही जो को बुद्ध पूर्णिमा ही। और ये परीक्षण ने अपनो देश है जो को शांतिपूर्ण परमाणु धमाको कियो, क्योंकि ये परमाणु री जो की ताकत और उपयोग है वो लड़ाई सारू को नहीं हो बल्कि विज्ञान और तरक्की खातिर करना हो। और इन दिन सु ही भारत है जो को दुनिया रो छठो देश बन गयो जो को परमाणु ताकत सु संबंध हुआ करे। और जैसलमेर जिला री जकी पोखरण सु करीब 140 किलोमीटर दूर लोहार की गांव रे कन्ने एक सूखो कुओ हो जिर मायने परीक्षण करियो गयो। और वो इलाको जो को है वो आबादी सु घनो दूर हो। और अठेरी जकी रेत ही बा माटी परमाणु रेडिएशन ने आपने रोकन रे सारू काफी मददगार भी साबित हुई। और ई धमाके सु जमीन में एक मोटो जो को खाडो पड़े हो वो आज भी अठे आपने देखने मिल जावे। और ई मिशन ने करीब 75 वैज्ञानिक री जकी टीम ही बा दिन रात काम करर पूरो करियो।
3: जी बिल्कुल। और देखो यूं भी कहवे के शांति रे खातर शक्ति होनी भी जरूरी है। और जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या देश शांति रे तरफ बढ़े तो विनो जो महत्व है वो बढ़ जाया करे। तो एक और दिन भी है कोमल जी आज, और वो है विश्व एड्स टीका दिवस।
2: बिल्कुल।
3: तो आज रो जो दिन है वो पूरी दुनिया रे मायने विश्व एड्स टीका दिवस रूप में भी मनायो जावे है। और जब भी इन बीमारी रो नाम आपे सुनो तो कई बार जो लोग है वे झिझक जावे, पर आज रो जो वैज्ञानिक युग है फिर मायने सही जानकारी ही आपनो सबसे बड़ो बचाव है। और आज भी देखो के कई जगह माथे इतो ज्ञान और जानकारी रे अभाव रे कारण लोग जो है खुलन बात नहीं कर पावे इन मुद्दा पर, क्योंकि यार मन में थोड़ी सी कोई तरह की भ्रांति भी है, झिझक भी है। पर देखो चाहे गांव री चौपाल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, हर जगह इन पर खुलर सही वैज्ञानिक जानकारी रे साथ बात होनी चाहिए। बस इन खातर जो सोच है या जो जागरूकता है वह बढ़ावन खातर ही आप इन तरह दिनों रो प्रचार प्रसार करिया करो। और कोशिश करिया करो कि जो भी तरह की भ्रांतियां हैं वे लोगों मायनू हट जावे और लोग एक सही ज्ञान और शिक्षा रे सागे समाज मायने आगे बढ़े।
2: बिल्कुल। और भी जानकारी आप तक पहुंचा लाओ, सुनावा आपने एक और प्यारो सुख की।

0: देखो कोमल जी, आज अपन कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बात करी थी कि अधिक मास शुरू हो गया है, तो हर बार अधिक मास रे मायने आपने अठे एक विशेष परिक्रमा रो आयोजन होया करे, जिन्हें की मारवाड़ रो कुंभरी जा उपमा मिलोड़ी है। तो आज इन खास परिक्रमा रे बारे में अपनी सखिया ने बतावला, अधिक मास रे मायने जो कि आप काले सुन कह रिया हो कि लागू हो गयो है अधिक मास, तो हर अधिक मास रे मायने मारवाड़ रो औकुंभ है बिनी शुरुआत होया करे, जो कि अब की बार 25 तारीख को होवेला, और 25 तारीख रे आड़े पाड़े ही 9 तपेरियों की शुरुआत हो रही है। तो और जो समय है वो खूब ताप पड़ेला इन धरती पर, और एड़े ताप रे मायने भोगी शैल परिक्रमा जिन्हें आप कहवा, तो आ परिक्रमा रो आयोजन करी जला। इन परिक्रमा रो आ मान्यता है कि जो भोगीशल पर्वत है वे हिमालय रा पुत्र हा, और इन खातर अगर यारी परिक्रमा करो तो बिल्कुल वह हिमालय री परिक्रमा रे बराबर मानी जे है। तो इन खातर जो भक्तगण है वे भोगीशल परिक्रमा करिया करे, और खूब कहवे कि जो इन ताप रे मायने इन परिक्रमा ने पूरी करनी खूब अग्रो काम है, खूब मुश्किल है, क्योंकि देखो ओ तो ताप पड़े और ऊपर जो पथरीलो रस्तो है, बिन खातर पूरी तरह जो अपना जो भक्तगण होवे या जो श्रद्धालु होवे बियाने थोड़ी कष्ट रो सामनो करनो पड़े। पर और जरूर जानना चाहिए कि आ जो परिक्रमा है ना पूरा पथ पर अलग अलग तरह की जो सुविधाओं है व्यवस्थाओं है बियारो भी बिल्कुल ध्यान रखी जाए कि जगह जगह जो पड़ाव है ब्या पर जो श्रद्धालु है बियाने टेंट री व्यवस्था, पेयजल री व्यवस्था, और जो अलग अलग मंदिर है जो कि रातानाड़ा गणेश मंदिर शुरू होवेला आ, तो पूरे रस्ते रे मायने यार वास्ते अलग अलग तरह की सुविधाओं रो भी आयोजन करिया करे।
1: बिल्कुल। और ममता जी रो जो को आयोजन है वो इस बार काफ़ी बड़ो होने वालो है, क्योंकि ये यात्रा री जो की शुरुआत ही बा हुई ही 1926 ने 20 फरवरी ने। तो इस बार मतलब ठीक 100 साल जका है बेहुक्या है, तो ये यात्रा रो शताब्दी वर्ष कहवे जिन्हें घनी धूमधाम से इस बार मनायो जाए। और ये जकी यात्रा री शुरुआत है बा घंटाघर में कार्यालय सु भगवा झंडो फेराउन रे साथ ही तीजा माझी मंदिर में संता रे हाथसू है पूजा रे साथ हुआ करे। और जका पड़ा पड़ाव लिया बात करी वे पड़ाव सात पड़ाव लिया करे, जिया कि गणेश मंदिर आप बतायो, पचे चौपासनी बडली क्षेत्र, बैजनाथ महादेव मंदिर, बेरी गंगा, मंडोर उद्यान, संतोषी माता, और पचे गंगा श्याम जी मंदिर में महाआरती रे साथ ही यात्रा रो जो को संपन्न है बहु जाया।

0: और ममता जी देखो, गर्मी चल रही है तो गर्मी रे मायने सब रोमन करे कि आपा कुछ ठंडो ठंडो खावा, कुछ ठंडो ठंडो पीवा, मन है जो को शांत हो जावे।
1: बिल्कुल
0: पर कितो भी कर लो, चाहे ठंडो तो खावा लेकिन कठे न कठे अपनो मनो कर करी कि आपा चटपटो भी खावा। आपा ठंडो और मीठो कितनी देर खाता रहे, खट्टो मीठो वो भी मन कर ही चट्टो चटपटो चटपटो कुछ खावा। और पर चटपटा को नाम लेते ही फास्ट फूड है जगह याद आवे।
1: हाँ बिल्कुल
0: पर एक खराब फास्ट फूड शरीर में खासी कमजोरी भी कर देवे, थकान भी महसूस करावे, शरीर में कई रोग है धीरे धीरे पैदा कर देवे। तो अगर आपा दिन की शुरुआत एक ऊर्जा भरपूर कोई खान पानू करा जो कि सेहतमंद भी रहे और चटपटी भी है, जो कि अपन मन है जो को मन में भी नहीं रहे चटपटो भी खाला, तो आपा कलेवा में एडी चीज लेवा जो कि प्रोटीन से भरपूर हुए, कमजोरी भी कौन लागे और थकान भी महसूस कौन हुए। तो इनके वास्ते आप काला चना है जगह आप भिगोर रख दो रात को, क्योंकि आयरन भी हुए प्रोटीन भी हुए और पावर हाउस है जो को आप इन बोल सका,
1: बिल्कुल
0: फाइबर से भरपूर भी आने बोलिया करे। तो आने बीजोर पहली पानी में नमक भी डाल दो ताकि चना वेज का फीका नहीं लागे। और पछे सुबह आप एक बारीक कटेड़ो प्याज ले लो, एक बारीक कटेड़ो उबलेड़ो आलू ले लो, थोड़ो सो ले लो नींबू को रस, थोड़ो सो चाट मसालो, स्वाद अनुसार काड़ो नमक भी रमाइन डाल दो, और अनारा दाना 2 बड़ा चम्मच ले लो, और सब आने अच्छी तरह से मिक्स कर ऊपर सो बारीक कटेड़ो धनियो डाल और आप भी निखा सको, जो कि आपके सेहत रे वास्ते भी काफी फायदेमंद रही, जिमें तेल भी कौन पड़े और गर्मी में भी फायदेमंद रहे।
1: आप जब बात करी नहीं तो मैं जब स्कूल में पढ़ती कोमल जी, तो हमारी जो स्कूल है बटे खन एक छोटी सी दुकान रहती, तो उन टाइम तो इतनी चीज़ों मिलती को नहीं, दुकान में तो कोई बिस्किट मिलता है, कोई कुरकु दूसरी कोई चीज़ खाने पीने मिलती, पर वो है कि वो जो आप नाश्तो बताओ नहीं वो बिल्कुल मिलता, और भीड़ इतनी पड़ती कि अगर आप 5 मिनट लेट हो गया नहीं तो लाइन में खड़ा ही रहता, आते
0: बिल्कुल
1: नहीं आता बेचना। तो चलो एडो ही चटपटो एक गीत भी ले आया था आप वास्ते।

0: तो ममता जी आज की जेठ रमाई ने गर्मी पड़िया करे, ये गर्मी पड़न सु भी आपने कई लाभ मिले और गर्मी नहीं पड़े तो इरो कारण भी आपने सूखो है जो को देखनो पड़िया करे। और इपर भी कई कहबता है जो कि बनेड़ी है जी कि जेठ तपिया तो आषाढ़ कतिया, यानी अगर जेठ रा महीना में खूब तेज और कड़क धूप पड़ी तो आवन वाला आषाढ़ महीना में बहुत अच्छी बारिश हुई। और यहाँ भी कहवे कि जेठ बहे पुरवाई तो सावन सूखो जाई, यानी जेठ में पूरबरी हवा चलन लाग जावे तो मानसून है जो को खराब हो जावे और सावन रो महीनो है जो को सूखो निकल जावे।
1: तो पहला रो लोग है वे कहावताओं खूब सारो ज्ञान बांटता। तो बिल्कुल अपना कार्यक्रम रे सागे की सागे भी आप चाहो कि सखिया यूं ही जुड़ी उड़ी रहे और तेरे भी ज्ञान भी बात जानिया करे। पर आज जो टाइम है वो आपने इशारो कर रियो है कि अपनी सखिया सु रुखसत लेवनो टाइम हो गयो है। तो आपरी दोई सखियां ममता राजपुरोहित और
0: कोमल राठौड़ ने दी राव
1: देराव
0: सीख
1: सीख
0: चाला
1: चाला राम
0: राम राम।
1: राम।

ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे

0: भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्ततयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक

0: मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत पहली जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब

0: राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।

0: शुक्रिया।
1: और भटियापुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
0: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए, बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes.
2: That's very nice,

0: means what you have observed.
1: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds, and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
2: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
1: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
2: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
2: colors.
0: Very nice.
4: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajender Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistants in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।

0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार

0: स्कूल नहीं जा पाईं।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था।

0: एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
4: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
4: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने

0: 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के ठीक 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो जी, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. जी हाँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में. दोस्तों, आज की शाम जो है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की शाम फरमाइशों के नाम, वो गीत जिन्हें सुनकर दिल मुस्कुराए और वो तराने जो किसी की याद दिलाए. जी हाँ, आज जो है दिल की डायरी खोलिए और अपने पसंद का वो प्यारा सा गाना चुनिए और भेज दीजिए हमें. कहाँ और कैसे वो बताएंगे हम आपको थोड़ी सी देर में. दोस्तों, आज के शाम में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हैं. मैं आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
1: और इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज मंडे की शाम फरमाइशों का पिटारा खुलने वाला है, तो अगर आप भी अपनी फरमाइश का अपना मनपसंद गीत कोई सुनना चाहते हैं तो हमें मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब कहाँ कर सकते हैं उसकी बात भी बताएंगे आपको पूरी, लेकिन उससे पहले आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय करेंगे।

0: 9413293599। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413293599। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी फरमाइश का कोई भी गीत, उस फिल्म का नाम, उस गीत का नाम लिखकर भेज सकते हो, हम सुनाएंगे आपको आप ही की फरमाइश के गाने। और हमारा एक मेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, जो कि है yuvapasandjodhpur@gmail.com।
1: तो दोस्तों, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फरमाइशों का। आइए सुनवाते हैं आपको इस फरमाइश का ये गाना।

0: दोस्तों, इस फरमाइशी शाम में पहली फरमाइश हमारे पास आ पहुंची है हनुमान मंदिर रोड से, अनिल गौरव मानसी कविता अरोड़ा की। वहीं छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा की।
1: वहीं साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है श्रॉफ रोड राजकोट से, प्रेमा रानी जाटव डॉली और सुरेश डोकर। गंजडू वारा से आई है मास्टर फरहत शेख, चमनपुरा मौरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली की तरफ से। वहीं साथ ही साथ बिहार स्टेट डुमराव से आई है वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से है प्रभा जयपुरिया और गौरैया जानंद से है अशोक जाटव। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: दोस्तों, आप भी अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413329359 पर, और आप ईमेल कर सकते हैं yuvapasand@gmail.com। दोस्तों, देखते हैं अगली फरमाइश हमारे पास कहाँ से है। भोपालगढ़ राजस्थान में राजेश मेघवाल की। वहीं भोपालगढ़ राजस्थान से आई है धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार की।
1: साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है कापस हेड़ा दिल्ली से फिरोज़ खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव की तरफ से।
0: वहीं हिसार से आई है राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की।
1: रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक फातिमा और बीबी अलिसबा शेख की तरफ से। वहीं साथ ही साथ गज डूंडवारा से आई है मोहम्मद कलीम जख्मी और बीबी खान अजनबी की तरफ से। बात करें मुंबई फिल्म सिटी से तो वहां से फरमाइश आई है मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन की। आइए आप और मिलकर इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय करते हैं, और फरमाइशों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। अगर आप भी अपनी फरमाइश में भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।

0: इस वक्त चल रहा है युवा प्रसन्न फरमाइशी प्रोग्राम, आप एंजॉय कर रहे हैं इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: प्रज्ञा।
0: और आज की जो अगली फरमाइश है वो बिल्कुल बता देते हैं। फरमाइश का पिटारा खुल चुका है और अगली फरमाइश में है सीमांध्र पार कर राजकोट से SK मुची, संगीत कुमार, वाणी कुमारी और विरमपुर गुजरात से है अर्जिता कुमारी, सोनाली कौर, ज्योति और संदीप कौर।
1: वहीं खेतेश्वर कृषि फार्म से है नाग सिंह राजपुरोहित। वहीं मुंबई से आई है अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदव जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। वहीं दिल्ली से आई है आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद फूलवाले की तरफ से।
0: साथ ही साथ हरियाणा से हैं अंकित कागड़ा, मोनी कागड़ा, प्रिंस बूट, सीताराम कागड़ा, साहिल कागड़ा और मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से है शेख ज़ियाउर रहमान, शेख उताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान की तरफ से।
1: वहीं जोधपुर से आई है छेलाराम मेघवाल, रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल की तरफ से।
0: धनौरी तेलीवाड़ा से है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू की तरफ से। आइए आप और मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गीत।

0: दोस्तों, आज के इस फरमाइशी शाम में अगली फरमाइश आप पहुंची है महाराष्ट्र से, शंकर लाल गणेश लाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जयसाल की तरफ से। वहीं लूणी से आई है अलादीन धुंदेश्वरी की तरफ से।
1: फरमाइशों का सिलसिला जारी है, पिटारा खुल चुका है और अगली फरमाइश भी बिल्कुल हमारे सामने है। बता देते हैं आपको, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बीबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया, और वहीं साथ ही साथ मास्टर अल कबीर की तरफ से।
0: वहीं हनुमानगढ़ से आई है रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान की तरफ से।
1: किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से है संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा की तरफ से।
0: वहीं जलालाबाद वेस्ट से आई है सुरेश, पूनम, विशाल प्रिया, दशानी और नमित आहूजा की तरफ से।
1: अगली फरमाइश है बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून की तरफ से। वहीं साथ ही साथ जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसूल हक और शरफुद्दीन अंसारी, जालंधर से संदीप कुमार जाटोलिया की तरफ से। आइए आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा।

0: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से इस वक्त प्रोग्राम यमुनी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल।
0: मंडे का दिन है और फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है, तो अगली फरमाइश कौन सी बता दीजिए।
1: अगली फरमाइश आई है जफराबाद से। सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, प्रणाली सदर्व, सानवी देशमुख की तरफ से।
0: और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है मेरठ कैंट से। दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई की तरफ से।
1: वहीं कलानौर से आई है नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा की तरफ से।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल की तरफ से।
1: दोस्तों आप भी अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413329359 पर।
0: और भी फरमाइश बिल्कुल हमारे इस पिटारे में है, जो कि है धमदा ग्राम सुखरी कल्ला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल की तरफ से। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।

0: बुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के है, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: तरकार
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती,
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: ओके दैट्स इट। फिलहाल के लिए प्रोग्राम यूवन को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल, और बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की। भैया ये जो इसकी जो पॉइंट टेबल्स की जो शीट है ना, वो फिलहाल कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजिंग हो चुकी है जैसे हमारे मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री की जो पॉइंट शीट आती थी ना, कि भैया समझ ही नहीं आ रहा, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। सब लोग जो है वो प्लेऑफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पॉइंट टेबल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी कैलकुलेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। लेकिन मुश्किल का सामना करते करते आरसीबी ने जो है वो सबसे पहले क्वालिफाई कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अभी तक 13 मैच खेले, 9 जीते हैं, सिर्फ 4 ही मैच में हार मिली है। रन रेट भी बढ़िया है साहब, +1.065 की रन रेट से आगे चल रहे हैं। और दो जो टीमें हैं सबसे निचले पायदान पर है, उसमें LSG और मुंबई इंडियंस का नाम है जो कि एलिमिनेट हो चुकी हैं, और बची हुई 7 टीमें जो है वो प्लेऑफ में आने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब वो जो 3 टीमें बची कौन सी होगी, उसके लिए भैया अभी कुछ दिन और आपको IPL के मैचेस देखने पड़ेंगे, उसके बाद प्लेऑफ की रेस शुरू होगी। और बात करूँ गुजरात टाइटन्स की, तो उनका भी रास्ता बस वैसा लग रहा है कि थोड़ी सी दहलीज पर ही बैठे हैं, एक मैच जीते और भैया वो प्लेऑफ की रेस में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद SRH, पंजाब किंग्स, CSK, RR, DC, KKR, इन सब का रास्ता जो है वो खुद की जीत पर और दूसरी जो पड़ोसी अपनी टीम है उन पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह से वो जीते हैं। नेट रन रेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिलहाल के लिए युवा पसंद फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है, और अगली फरमाइश जो है हमारे पास आई है वो आई है
3: छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखिलाल वर्मा की तरफ से। वहीं हरगोविंद नगर से आई हैं सुरेंद्र, अनिता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स की तरफ से।
2: साथ ही साथ पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, इनकी तरफ से आई है। और वहीं साथ ही साथ जिला मुरादाबाद ग्राम तुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आई है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सैनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर की तरफ से। और साथ ही साथ अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे तो फरमाइशों का पिटारा बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। और पार्थ रेडियो क्लब की तरफ से छत्रपति संभाजी नगर से है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की तरफ से। आइए आप और मिलकर एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश का एक ही। तो और भी फरमाइश हमारे पिटारे में शामिल है, वो है
3: श्री गंगानगर की तरफ से है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की तरफ से। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से। और खुशखबरी है जी, बड़ी खुशखबरी है, ITR 1 और ITR 4 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने FY26 AY27 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है, जिसमें पात्र जो करदाता हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न अब भर सकते हैं। फॉर्म आपकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे और रिटर्न दाखिले की आखिरी जो तारीख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो रखी गई है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई जो है वो अंतिम तारीख है। और कौन सा ITR फॉर्म लागू होगा यह आय और करदाता की उसकी जो है अपनी अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी पर निर्भर करेगा। युवा प्रसन्न फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है और अगली फरमाइश हमारे साथ हमारे बीच कौन सी है आप बता दीजिए।
1: दोस्तों, अगली फरमाइश जो आई है वो है पंजाब से। क्रियांश, योगेश, ओम, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी की तरफ से।
0: और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है वो आई है आपके बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान और बागवान फैमिली के सभी सदस्यों की तरफ से साहब।
1: वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई है प्रमिला, हेमा और अंधरा सिंह की तरफ से। वहीं शनिचक्र से आई है दुर्गा कुमारी और राधिका कुमारी की तरफ से।
0: सदर बाजार कुरावली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और साथ ही साथ सोनम वर्मा और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से फरमाइश है। और अगली फरमाइश की मैं बात करूँ तो वो है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो की तरफ से। आप और मिलकर एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा म्यूजिकल गाना।

0: दोस्तों, इस फरमाइश की शाम में अगली फरमाइश हमारे पास आप वाजी है। लूणी से गांव जोधपुर है, गांव लूणी जिला जोधपुर है। वो है अजीज टेलर, शबना बानो, रुखसर बानो, काजल बानो, आदिल खान की तरफ से।
1: तंत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा की तरफ से। आइए आप और मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: जी बिल्कुल, प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे थे इन आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और मेरे साथ
1: आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल। दोस्तों आज की शुरू के महफिल को बस यहीं पे विराम कहते हैं और हम मिलेंगे आपसे एक नए दिन में, एक नई शाम में।
0: आज के प्रोग्राम का संयोजन रहा, संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान, और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमरीका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच

करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण में आइए पहले जान लेते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं चौपाल और 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सीमा दीदी गूंज। ये था आज के कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब जान लेते हैं कल के मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 बजे सुनिएगा चौपाल और 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सीमाड़ेरी गूंज।

0: अभी आपने सुना समूह स्वर में देशकाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वी डी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः, नील अर्थव्यवस्थायाः, हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय, प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः, विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वी डी सतीशनः अद्य प्रातः

0: तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंगसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथितसंस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानां आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थं अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन्नवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिमेशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्तीति। पश्चिमेशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी, होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य वियतनाम, दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंहः वियतनाम

0: देशस्य राष्ट्रियरक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींवसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों

0: नमूनों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जांच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
1: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका।
0: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
2: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायक की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको उन्होंने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इसका 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सीबीआई की जांच में परीक्षा से पहले लीक हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के मुख्य स्रोत का भी पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई ये परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 1 सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीट वेव की आशंका है।
3: अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान

0: विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
1: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1.5 महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। 1 सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों, स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आमजन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23

0: 20,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंच कर्म विशेषज्ञ डॉ सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉ अनिता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉ यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माय जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोरे सागे खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान माय कही जियो कि

0: ਯੂਕਰੇਨ ਅਰ ਆਤੁਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਟੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: बातचीत दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माए ग्रीन स्ट्रेटजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावन माथे ही सहमति बनी। इन्हें

0: या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत के दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हल्का माय ग्रीन स्ट्रेटेजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इन्हें तेत अंतरिक्ष हल्का माय मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार माथे ही सही करी ची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि दुनिया की चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था और दिशावर माय बिक्री लगातार बढ़ रही है। वे आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव री वेबसाइट री शुरुआत रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री गोयल कहो कि इस साल भारत रा सामान री दिशावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर रा लेवल ताई पुगी, जो लारला साल री तुलना माय करीब 5% बत्ती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहो कि चालू माली साल सारू भारत दिशावर माय बिक्री 1 ट्रिलियन डॉलर रा लेवल ताई पुगाउनो तय किन्नो है। श्री गोयल देश रा कारोबारी समुदाय रे साल 2047 ताई विकसित भारत बनावन रो लक्ष्य हासिल करण सारू पूरी मजबूती आगे बढ़वारो भरोसो जतायो।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: कोटारा जेके लोन अस्पताल में लारला दिना जापा वाली लुगाई आ रही तबियत खराब हेवन और मौत वेजावन रे मामला में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुरुआती तौर इलाज रा काम में आवन वाला साजो सामान में संक्रमण या दवाइयां में गड़बड़ी री शंका जताई है। श्री खींवसर आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि इलाज रा काम में आवन वाला शंका जोग साजो सामान और दवाइयां रा नमूना जांच सारू भेजी गया है, जारी रिपोर्ट 23 मई ताई आवण री आस है। वे कहो कि एम्स री टीम ही अस्पताल रो दौरो कर मामला री जानकारी लीनी है और रिपोर्ट आया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल जो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन।
1: राज्यपाल हरिभाउ बागड़े आज विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रा सिलसिला में विधानसभा रा नुआ प्रतीक चिन्ह रो विमोचन किन्नो। इ मौके वे कहो कि ओ प्रतीक चिन्ह राजस्थान री जनता री सोच बतावे है। राज्यपाल कहो कि इ प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी रा रूंखड़ा और विधानसभा भवन रा फोटो शामिल करी चिया है, जो प्रदेश री संस्कृति रो दर्शाव करे है। इ मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि आज विधानसभा रा चार ही ऐतिहासिक दरूजा रा राजस्थानी संस्कृति रे मुजब राखी जिया नुआ नाम रे पट्टियां रोई अनावरण करी जियो।
4: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई नीट पेपर लीक मामला में लारला 24 घंटा में 5 ठौड़ा छापामार और कई खास कागजात, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कीना। जांच में परीक्षाओं पहली लीक हुआ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रा पेपर लीक हुएवन रा मूल स्रोत री ठापड़ की है। एजेंसी महाराष्ट्र रा लातूर एक और कोचिंग क्लास रा निदेशक ने गिरफ्तार कीनो है। इ मामला में हाल ताई जयपुर, दिल्ली और लातूर समेत देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं 10 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। ध्यान जोग है कि इ महीना री 3 तारीख ने भी आ परीक्षा पेपर लीक री शंका पाछे रद्द

0: करती रिची ही ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच मौसम विभाग 19 जिला में आज और कल लू बाजन सारू चेतायो है। इन बीच चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हल्का में गर्मी रो कोप रहवेला। वे बतायो कि इन दौरान सरहदी हल्का और लंकाऊ उगनी हल्का में कठे कठे लू बाजन रे शंका है।
1: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
0: इन बीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इन माए बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइया और खुला माए काम करने वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखने बाबत कही चियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवन, माथा माए जोरदार दर्द वेवन और बेहोशी वेवन री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करने री राय दी रिची है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रिची है। ईसा गई शरीर न ठंडो राखन सारू छाछ, नारियल रो पानी, नींबू री शिकंजी, तरबूज और खीरा सरीखी चीजा काम लेवन बाबती कही चियो है। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाई चियो। इस मौके प्रदेश भर रा सरकारी संग्रहालय और स्मारक माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर और अजमेर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा सैलानिया रो तिलक लगार और फूलान री बारिश कर और स्वागत करी चियो। इस मौके देसी परदेसी सैलानिया और जनता ने सगला संग्रहालय और स्मारक माए मुफ्त प्रवेश दियो चियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माए लगाई जी प्रदर्शनी ने निरखी। इस मौके वे कहो कि संग्रहालय माए नुआ सुविधा मुहैया करार सैर सपाटा ने बढ़ावो दियो जा सके है। वे कहो कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत ने बचावन और सैर सपाटा ने बढ़ावो देवन सारू लगातार काम कर रही है।
2: सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज सबको देना चाहूंगी कि ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज को करें।
0: जैसलमेर रा दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली रा सरकारी बांगड़ म्यूजियम में सांस्कृतिक धरोहर ने बचावन रा मुद्दा माथे विचार गोष्ठियां राखी ची। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर माए वारा रहवास माथा जनसुनवाई कीनी। वह जनतारी समस्यावां सुन और कई परेशानियां रो मौके निपटारो करायो। इस मौके वे कहो कि सरकार समाज रा हर एक पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावणो यकीनो है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं जुड़ी नहरा माए 1.5 महीना पाछे आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ी चियो, जो आवता 48 घंटा माए नहर रा आखरी हल्का ताई पूग जावेला। इनु सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ हल्का रा किसाना ने साखा री बुआई सारू पानी मिल सकेला। सिंचाई विभाग रे मुजब 1 अप्रैल नु लागू करी जी नहरबंदी रे दौरान नहर री सिल्ट सफाई, टूटी पट्टणियां री मरम्मत, रेगुलेटर रा रख रखाव और दूजा जरूरी काम करी चिया। दूजिकानी नागौर और डीडवाना कुचामन जिला में नहरबंदी रो आखिरी दौर चाल रियो है, जो एक सप्ताह ताई चालेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिशावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी।

0: राज्यमाए जबरदस्त गर्मी रो दौर। आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखी चिया। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

गांव ग्वार अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज। सिंजिया 7 बजिया सुनना न भूलो। आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतार और फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आप रो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मान सु गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव पावना सर जैसलमेर सो जितेंद्र पवार गुलाब पवार तेजपाल नेपाल पवार पारस पवार गोविंद पवार गौतम पवार रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और अणा घराला माने ईमेल भेजू है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु झालावाड़ सु कागद आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी
1: बदवासिया सुकृष्ण राम सांसी पप्पू राम सांसी कंवर राम सांसी और विनोद सांसी व्यास कॉलोनी एयरफोर्स चुन्नी देवी मेघवाल बिंदु मेघवाल कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल और आणा घराड़ा
0: सारण नगर बाड़मेर सु महराज सारण हीरा सारण हितेश राज नवप्रीत सारण और आणा साथी गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आणा साथी फलोदी सु ईमेल भेजियो है सुभाष लेखावत और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची
1: ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और कागज आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरिठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौला राम बेणीवाल खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य हिंसर नागौर सु कल्याणमल प्रभुराम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्य और आणा सगला साची
0: तो साथ या सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल ओ ईमेल आयो है धन्ने की ढाणी तहसील सिंहधरी सु गणेश तरड चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेश मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो मलोट कैंप पंजाब सु माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और आना सगला घर वाला और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सु गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार आगलो कागद है गांव अरनियाली दोरी मीना बाड़मेर सु लिखन वाला है फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण सूरज शारदा

0: भाग्यश्री हार्दिक खत्री और आणो सगड़ो खत्री परिवार।
1: और कागद आयो है फाजिलका सो लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार। और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सुन लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाला। गांव खारा बेरा भीमावता सु माने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन। और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी।
0: आऊ फलोदी सु माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया संतोष टाटिया मनोज सुरेश खुशबू सपना धनी और भूमि। मथानिया सु भगराज वर्मा बेबी वर्मा हनुमान मदन और गोविंद सुथार। बिरे सु रतना राम उदेणिया मेहराम उदेणिया गुलाब राम और आनो सगलो परिवार। बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आना सगला साथी। हारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उम्मीदा राम चेतन भोम सिंह और आना सगला साथी।
1: तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। आगलो कागद है गांव छापला सू मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो। पवनपुरी बीकानेर सू भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाईमा सरोज सत्यनारायण दाईमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और सुई आशीष जतीन और आना सगला घराला। सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मन्नू प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर। अमरखेड़ महाराष्ट्र सु ओ कागज लिखियो है अभिजीत ग्वाणकर सरिता ग्वाणकर सिद्धांत प्रिंस और एकांश ग्वाणकर। और ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाली यादव। गांव धुंधड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी। गांव चाडी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार। गांव केलवाद सोजत सु ओ कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल। कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मेघलानी सीमा शाइना विशाल मेघलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मेघलानी रो। तो साथ यहाँ सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

आभार आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम अब कार्यक्रम रो बगत हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ राम राम और नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: फाटक आज बजे की तुरी मारे एकदम कौ है
1: आज शुभ दिन आयो है नवलो बार
0: राम राम
1: पगे लागू
0: आवरी मैं आवरी भाई कमरी में आवरी
1: एकदम
0: भाई देखे कौ है गैंग दिन में आजकल बढ़ती गिनी बाजे
1: यो
0: तो हूँ कौ है नीमड़े हेटे बैठो रू दिनू गए
1: हाँ।
0: दे पर पहला हूँ कमरी में आज
1: यो
0: हमें ओ देख मैं ओ कुल्लर उल्लर लगा दियो
1: हाँ।
0: चारू मेरू गुडाल में मारे कमरिये में हवा आवे
1: हाँ।
0: दो है बारिया है यार मत हूँ कहो है के भाई तापड़िया भिजो
1: हाँ।
0: बारिया मत है जो कहीं है के है जो बार ले पाड़ू ढक दू
1: खुदरा तो गाड़ो है की इंतजाम करिया यार मारा डांडा रखा ही करिया
0: डांडा भाई छपरा है ही है पानी की खेलिया
1: पानी बराबर पाओ
0: हाँ पाओ हाँ चू चू कोई नेकू ने वेजड़ भाई जैसे करूँ ये
1: यो
0: समझिया
1: के खुद मायने बड़न हो जाओ
0: हो जाओ किने किने भाई नी रात्रि नींद आवे नी दिन री नींद आवे पारड़ा कह नी फेर फेर कह टाइम दो पास करूंगा मैं कौ है क्या कारो
1: आज शुभ दिन आयो रे
0: अरे आयो कारो है बात करे
1: तो
0: तारा मगज खराब हो गया क्यों है
1: कौ
0: है आज तो भाई क्या तो एक कम है क्या बीज है जेठरी
1: और अलावा भी हुआ है दुनिया में बहुत कुछ
0: कौ है बता
1: आज यू है अपन देश है नी नवलोबा आज विज्ञान में प्रगति करी थी थाने ठाए
0: आज दिन
1: हाँ,
0: हाँ।
1: पोखरण में परमाणु विस्फोट दिवस है आज हम
0: यू कह करनी बहुत तो
1: 18 मई 1974 में पोखरण में पहलो टेस्ट हुई तो नवलोबा परमाणु रो
0: हाँ हो भाई हुई हो
1: हाँ।
0: देश रा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हा
1: अपने ऑपरेशन रो नाम हो स्माइलिंग बुद्धा
0: अरे हाँ भाई पर दूजड़ो यो हो निंदनु में
1: हाँ।
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी है प्रधानमंत्री
1: इंटाणु में हो तो जद इरो नाम हो ऑपरेशन शक्ति
0: हाँ, बात है भाई देखे अपने परमाणु बम बनाऊना
1: हाँ।
0: अपारा कह जी का विगत बार काम करिया
1: करिया
0: और अपारा देश रा महान वैज्ञानिक दे जनता रा राष्ट्रपति
1: हाँ।
0: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब है नी
1: हाँ।
0: भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न करियो मंठा
1: है
0: मैंने है ट्रान भाई है कह नी कह कह हजारों वैज्ञानिक है नी
1: हाँ।
0: बे रात दिन लगान दे पहले क्या
1: रिसर्च करी थी नवलोबा
0: अरे भाई अपारो एक बात कहूँ देखो अपा कि नहीं छेड़ा नहीं पर कोई घर में
1: आपा ने कोई छेड़ दे तो नवलोबा आपा छोड़ा नहीं
0: हाँ मैं थे लुगी जाती क्या भाई जगह 3 महीने कितनी तारीख ही नहीं तारीख भूल गो 7 तारीख 6 तारीख ही
1: हाँ तो थे भूलिया की कर है
0: अरे मारे भाई 5 रो पड़ जाए
1: यो
0: जदे उन दिन रात रा कह नहीं अटू भाई लड़ाकू उड़निया ले ले
1: ऑपरेशन सिंदूर
0: हाँ सिंदूर में
1: आज
0: को कहूँ क्या विंग कमांडर भूमिका सिंह कर्नल सापिया
1: सोफिया जी
0: अरे भाई देखे काम करियो जो मैं तो लुगई जात भाई
1: डरना
0: पड़े मन तो आपने
1: तो डरना ही
0: अरे भाई हूँ तो कह दी झूझ भी झूठ जा मन तो कोई की लुगई जात कह देनी
1: हाँ।
0: तो कानून मुझे भेज को है हक कूद मिली उड़ा
1: हाँ।
0: पर लुगई जात एक बात है भाई
1: कहूँ
0: है डॉड माते साबित करियो
1: हाँ।
0: के बा कमजोर नहीं है
1: हाँ देखिए।

0: बात मैं मानू और मैं धर्म शास्त्र है के मैं तो लुगई जात ने गिने जीव गिने पर देश रो संविधान है नी वो लुगई जात ने भाई देखे है आगे बदो नु काम करियो
1: सेवा में देख
0: ना सेवा में कोई कमी
1: मदर टेरेसा नवलोबा परमाणु माते एक खान बढ़िया गीत होना हुआ
0: हाँ होना
1: आज अपन शुभ दिन है
0: हाँ होना भाई होना

0: ये बात है
1: लो नवलोबा,
0: आ तो देश की तरक्की मजबूती है।
1: यू जड़ा मैं यू करो, मारे हाथ हालो थे
0: की थोड़।
1: अबे मैं थाने अपना
0: पोकरा आली,
1: अरे पोकरण नहीं
0: तो रामदेव राल जा,
1: अरे म्यूजियम हाला नवलोबा म्यूजियम दिखान लाओ थाने
0: अबजगर।
1: हाँ
0: अबजगर मार दे क्यों है वो थोड़ थोड़ अबजगर मार दे क्यों है।
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है आज,
0: अरे
1: मैं थाने बढ़िया बढ़िया म्यूजियम दिखान लाऊ नवलोबा अपने।
0: हमें रात रहा हलू थार कोई मगज काम करे को।
1: अरे तो आज थोड़ी हलन रो क्यों मैं थाने
0: कल
1: हाँ तो कल थाने हैंग दिखान लाऊ अल्टर अल्टर जितना म्यूजियम है नी हैंग अपन देश री संस्कृति ने तो जानो पचे यू कहीं करो।
0: आज तो है ही भाई देखे अपने में न्यारी न्यारी भाषा न्यारी बोली न्यारा न्यारा पहरवाज न्यारा न्यारा खान पान न्यारा न्यारा रीति रिवाज है भाई वो समझ गो। पढ़ा कह नहीं कह थे तू आज सभ्यता है बात सभ्यता भाई थे भारत देश री क्या है 5000 साल की सभ्यता है
1: नी।
0: हाँ 5000 साल है जूनी पुरानी क्या सभ्यता पड़ी है।
1: हाँ।
0: और उन सभ्यता मुझे भी नहीं
1: हाँ।
0: बात देखा करान हम जाके जद भाई देखे के कई बात हम ही आवे 5000 साल की सभ्यता में यू है के मोहन जोदड़ो सभ्यता ही
1: अच्छी बात है।
0: वैदिक काल हुई महाकाव्य काल हुई नंद काल हुई मौर्य काल हुई गुप्त काल हुई मध्य काल हुई और पच है जो अंग्रेजी काल हुई ठीक है। और भारत में मुगल जी का आया नहीं बे आया कह दे कह के गुलाम वंश आयो तुगलक वंश आयो खिलजी वंश आयो पहले भाई गोरी वंश आयो पचे है जो इब्राहिम लोधी बाबर 1526 में आया और अंग्रेज आया 1700 की मनहेंग था है।
1: तो नवलोबा ए म्यूजियम में हालो नहीं जन अट अपन ऐसी तो सब चीजें अठा पड़े अपने
0: जूनी पुरानी
1: इतिहास रे बारे में अपने उन टाइम में कई कई औजार कई कई
0: खेती की कर करता
1: हाँ।
0: कह नहीं
1: युद्ध की कर लड़ता
0: राजगाज की कर करता
1: कैडा सिक्का चालता
0: तलवारा कैडी ही भाई जीव जिंदावर कैडा हा हैंग भाई जगह भड़ई पढ़ई कैडी हैंग अबजगर मिठा पड़े।
1: हाँ यू
0: हम जानी कह छोटा छोटा बजा गाडा बनाएड़ा कई नया चीजा है जो देखने मिले
1: तो अब की साल रही नवलोबा
0: बाजा नहीं बाजा ही कई नर नरा
1: अरे तरह तरह रा
0: एक चीजा एक छोट भेड़ी करी भाई
1: अब की साल
0: रही है देश आप आपरो करे
1: 2026 री थीम है एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय है।
0: हाँ बात है
1: दुनिया में जितना देश हरी नवलोबा सब आपरी है संस्कृति ने
0: सही तो बात है राखी है क्या भाई की कर तरक्की करी की कर मैं आज पूगा अटैर की कर हो तो हूँ ये गीत रोहणु हाँ क्या संसार में कहीं है
1: हाँ।
0: की कर हो यो
1: हाँ।
0: और की कर है जो वे है
1: हाँ।
0: और की कर हुए ला ठीक है
1: वाजन हुणा
0: हुणा ये बढ़िया देख जी हो रो जी सारो
1: आवन दो जो।

0: झूम के मगल
1: मैं जो बांधू पग में पायल
0: नाच के संसार।
2: देखियो
3: अरे भारी मामलो।
2: हाँ भारी कई भाई
3: तो बात करने यूं नहीं है, ऐडी बात नहीं है।
2: यूं तो बस हूँ क्या थार जड़ो हार जो मुझे तो मार तो कह नहीं गए गते हूँ जाऊँ।
3: आज नवलोबा थाने ठाए आज 18 महीने और भी घना ही बढ़िया काम हुआ था।
2: कई
3: आज रे दिन विश्व एड टीका दिवस यानी एड्स जिको आपने थाने ठाए के विश्व री एडी बीमारी है जिकी माते आप काबू नहीं पा पा रिया।
2: आज बात बात है जो भाई बा खतरनाक बीमारी
3: खतरनाक है पछे मिनक ने ले नहीं जावे एडी है।
2: हां बो कह नहीं के बब मिनक रो है जो देखे के करियोड़ी भुगतनी पड़े।
3: हां
2: ए मैं कई कारण हो जा वो रोग बड़ो खतरनाक है
3: पण हमें नवलोबा कहवे के वैज्ञानिक जितना भी है नहीं आपने डॉक्टर एंड वैज्ञानिक ए लोग मिल परा और इरे माते एक टीको निकालियो नवलोबा।
2: अच्छा
3: हाँ वैक्सीन जिन्हें कहते
2: हैं इंजेक्शन लगा
3: इंजेक्शन। हाँ
2: वहाँ तो देखे भाई या तो है तो कर्मारी बीमारी है।
3: हाँ
2: पर इमी क्या हो जाए रो कोई
3: खून
2: चढ़ी जाए कोई
3: गला चढ़ जाए कोई हो जाए ना लोग। हाँ
2: बाकी क्या नहीं भाई देखे वो तो है तो भाई देखे आप रिहाउ चुकी रो काम।
3: हाँ हाँ ची बात है। हाँ ची
2: बात है अठी राठी क्या डंडा हो युड़ा फिरे
3: जानन गेले करे जान जानन।
2: हाँ जद बे है जो को क्या नहीं भुगते खुद ही भुगते परिवार नहीं दुखी करे खैर की कौन भाई देखेगा। मैं एक बात है परमाणु विस्फोट आज दिन अपर देश तो हुयो तो मुबारकबाद है।
3: हाँ।
2: और अबजगर है।
3: हाँ।
2: वो उन दिन है तो वही है जिसको कहनी मुबारकबाद है।
3: हाँ।
2: और ये लाज लाज बीमारी तो इलाज टीको बनायो।
3: हाँ।
2: तो आने गैगिया गैगिया निकानी है जिसको मुबारकबाद है धन्यवाद है ठीक है। हमें ले होना कर भाई कोई विगत बार बात नहीं हुआ उनको
3: आज री विगत बार शुरू करा नवलोबा यू है कि आज जन्मदिन है अपने एच डी देवगौड़ा साहब।
2: ओ ठीक ठीक
3: है अपने भारत रा 11वां प्रधानमंत्री होया था।
2: अरे हरजन अली दे दे दे दे घोड़ा देव घोड़ा अबे हाँ बे है जो दिखना दे कह नहीं दे वो कह पर
3: कर्नाटक
2: आया।
3: हाँ कर्नाटक
2: है तो किसान किसान आदमी है।
3: हाँ
2: पर है जो कह है भाई थोड़े टाइम ही बढ़िया
3: नवलोबा ए 1 जून 1996 लेन 21 अप्रैल 1997 तक ही जरिया था।
2: हाँ थोड़ा दिन लिया भाई कह रही सरकार आ रही मोटी चली गोनी तो आने
3: और आने नवलोबा धरती रो बेटो कहता
2: कहे कहे भाई क्योंकि देखे धरती पुत्र है।
3: हाँ
2: तो भाई देखे के भगवान ने हजरत जरा कहने है जो बड़े शो का काम करता रहे मुबारकबाद है
3: बड़े। नवलोबा आज जन्मदिन है एस जगन्नाथन जीरो और ए भी आप ए भारतीय रिजर्व बैंक का 10वां गवर्नर रिया
2: और रिपिया माता अर्धस्क होता।
3: हाँ, यू
2: तो भाई जो जग जाओ काम कर गया।
3: हाँ।
2: तो आनी कोई भूल नहीं सके आने कोटी कोटी नमन है
3: मन में
2: भूल
3: चढ़ा। बड़े नवलोबा आज जन्मदिन है थावर चंद गहलोत जीरो ए अपने कर्नाटक रा 19वां राज्यपाल रिया था नवलोबा और वर्तमान में अबार कर्नाटक रे राज्यपाल बनियोड़ा है और 11 जुलाई 2021 ने कर्नाटक रे राज्यपाल रे रूप में शपथ।
2: ओ थावर जी गहलोत है भाई।
3: हाँ।
2: और कहनी पुख्ता नेता है।
3: हाँ।
2: चौका काम करिया तो कहनी के भाई मुबारकबाद है भगवान हजरत हजर आके आने बड़े।

0: भाई तो नहीं है जो क्या फोत होगा
1: है
0: हाँ तो फोत होगा तो नहीं है जो मंदिर फूल चढ़ाओ कोटि कोटि नमन करा बड़े
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ए भी अपने अटेरा भारत रा वनस्पति वैज्ञानिक होया था विज्ञान जगत में ए भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान रा जनक मानी जाए
0: जड़ी बूटिया जानकार है भाई सो का काम कर दिया
1: हाँ
0: कोटी कोटी नमन है मंदिर मेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है बाबा जय गुरुदेव जी प्रसिद्ध चमत्कारी आध्यात्मिक संत
0: अरे होया भाई संता जगह नहीं संत महात्मा ओलिया फकीर अपन अट घने होया और मिनक ने क्या नहीं भूलियो मार्ग बतायो अरे है जो को कह तापड़िया गाबा पैरता और मिनका ने है जो कह नहीं चौकी बात बताओ
1: तेरे मार्ग माते लेना
0: हाँ भाई लाया के भाई देखो कई चीजा है जो नहीं खानी चीजें नहीं पीनी चीजें उन्हें है जो सत्या ना सुबह शरीर हो
1: तो
0: हाँ जय गुरुदेव ने है जो कोई नहीं भूल सके पर बातें पौर ढोक देवा कोटि कोटि नमन करा मंदिरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: बड़े नवलोभ आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा और टेलीविजन री बेहद लोकप्रिय के अभिनेत्री होता और रीमा लागू आनो नाम हो तो
0: रीमा भाई हूँ जब ओ आनो आऊ मिलियो हूँ
1: है नी
0: और को मोटी टीकी लगाता है
1: हाँ
0: है जी को का
1: मार और रोल घड़ो करता
0: है हाँ करता करता है जी को थोड़ी कही है कि आगे बारी कजरे रही
1: हाँ
0: एकदम जोर जस्ती भाई
1: ए नवलोबा है मैंने प्यार किया साजन हम आपके है कौन हम साथ साथ है जड़ी फिल्मों में आप रोल निभाया
0: तो बढ़िया भाई सो को काम कर किया तो कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरा फूल चढ़ाओ तो आर मत कैमरो फेर युड़ कोई है जो दो आंगड़ी गीत सुना दे
1: वाह वाह।

0: अरे कहीं मामलो धान भारी लाग रही है आज
1: कहीं दिल दीवाना दिल दीवाना दीवाना थे देखो काम धंधे रहो
0: आयो
1: और तो को काम करो हमें देखिए
0: अरे नवलो बथान दासी आई हूँ बता दू हूँ आज अपने पुण्यतिथि है श्री कृष्ण पट्टा भी जोइस साबरी एर नवलोबा एठाए थाने अष्टांग विन्यास योग रो आधुनिक रूप दियो तो
1: वाह भाई दियो तो
0: योग करो ते थाने आ खुलखुलियो मिट जाए हां
1: करू भाई करू मने ही का दो कोई जगह हूं घणी करू
0: हां अष्टांग योग ही का अरे
1: मैं को मारे वो घर में है जको कह नहीं भोग लगानो
0: हां
1: आपने है जको कह नहीं किन किन भेळू तो करानी पड़ी
0: यो
1: तो हमें रसोड़े में पधारो
0: हां
1: और बढ़िया रसोड़ो तैयार करो आज अपन खीच बना लो
0: खीच बनाओ कड़ी बना ला हाथे
1: हां खाटो खीच
0: खाटो खीच बनाओ आज
1: आराम है जो कह नहीं जी माँ और भाई देखे थे और रसोड़े वाली तैयारी कराओ क्या किस दूर से जीते हूँ है जो फेर लू माड़ा
0: माड़ा फेर मगज हो जाए
1: माड़ा अरे मगज का भाई देखे माड़ा मारा हारो है मोटो
0: यो
1: और हमें देखे तारे खासा ऊंचा आएगा
0: आएगा
1: और अंदर पड़गोन प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरा तो भाई सेना लेवा ही राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा रेडी गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये गीत है धुरंधर द रिवेंज फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, शाश्वत सचदेव का संगीत।

ये गीत है लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से। अदनान सामी की आवाज़, सैयद कादरी और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत, फिल्म है परिणीता।
1: Hey, hey, hey, say you're mine.

ये गीत है युवा फिल्म से, मधुश्री और ए आर रहमान की आवाजें, महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात के 8:45 होने वाले हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के

0: प्रधानमंत्री योनस गॉस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है।

0: पांच देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत ने परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का

तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत है तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एस डी बर्मन का संगीत।
1: दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

ये गीत है चोरी चोरी फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: ये गीत है 20 साल बाद फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज और संगीत, बोल है शकील बदायूनी के।
1: जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजली।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। फिल्म है यादों की बारात।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

खेल जगत सुनने वाले सभी खेल प्रेमी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिसमें एक है पैरा एथलीट जगसीर सिंह से नवीन सिसोदिया की बातचीत और दूसरे जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से नवीन सिसोदिया की चर्चा।

0: आइए कार्यक्रम का आरंभ करें इस बातचीत के साथ जो नवीन सिसोदिया ने की पैरा एथलीट जगसीर सिंह से।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगसीर सिंह जी। आप पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इनके परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत के लिए अनेकों गोल्ड और सिल्वर और जाने कितने ही मेडल्स जो इन्होंने हासिल किए हैं, भारत को बड़े बड़े गेम्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनके अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं 2010 में, महाराणा प्रताप अवार्ड इन्होंने हासिल किया 2017 में, पैरा एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने 2010 में गोल्ड जीता था। आप कैप्टन भी रहे हैं पैरा ओलंपिक गेम्स के, आप फ्लैग बियरर रहे हैं 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक्स के, आपने पैरा नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके अंदर अभी तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कायम है और कोई उसको तोड़ नहीं पाया है। लॉन्ग जंप में आपने 6.9 मीटर का जो जंप है वो लगाया है। वर्तमान में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जगसीर जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जगसीर जी। आपके जो मेडल्स हैं उनकी तो लिस्ट काफी लंबी है, ये तो मैं कुछ ही बता पाया हूँ। आपने भारत का जो नाम है वो विश्व स्तर पर काफी ऊंचा किया है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पैरा ओलंपिक या जो पैरा एथलेटिक्स है वो क्या चीज है।
2: पैरा स्पोर्ट्स है जो एक जितने भी हमारे दिव्यांग हैंडिकैप लोग हैं उनके लिए एक तरह से अलग ओलंपिक से अलग गेम्स होते हैं, जिसके अंदर उनकी जैसे हाथ है जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है और जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका इवेंट होते हैं। जैसे जिनका हाथ नहीं है उनके उनमें हाथ वाले आते हैं, जिनका पैर नहीं है उनमें पैर वाले आते हैं, जिनमें ब्लाइंड है उनका ब्लाइंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक स्पोर्ट्स है, इन पैरा स्पोर्ट जब शुरू हुआ तो उनको एक अलग सा माहौल देने के लिए शुरू किया गया था, बाद में जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जहां ओलंपिक होते हैं वहीं पैरालंपिक होते हैं और पहले ओलंपिक होंगे फिर पैरा शुरू होते हैं, ऐसी एशियन गेम्स है फिर पैरा एशियन गेम्स है। और आज गवर्नमेंटें भी काफी हेल्प कर रही है, उनको पूरा एक समान दर्जा है, भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, सारी सरकारें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब कोई हैंडीकेप हो जाता है उसकी ट्रेजरी होती है तो उसको अपने जीवन यापन में या उसका अपने वहां से निकलने के लिए बहुत समय लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। और पैरा स्पोर्ट्स पैरालंपिक ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप दुनिया में बहुत अच्छा बन सकते हैं। और आज बहुत सारे पैरालंपियन हैं जो उदाहरण बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे, जैसे मैंने खुद ने भी इंडिया रिकॉर्ड किया जब मैं खेला और मेरा 1993-94 के अंदर 8-9 साल का था जब मेरा एक हैंड चला गया था
1: जी। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ट्रेजेडी रही जिसके चलते आप जो है ये हाथ के साथ आपके जो चोट लगी वो किस प्रकार हुआ, बताइए थोड़ा।
2: मेरा पुरुषोत्तमवास फतेहगढ़ गांव है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ही, तो वहां से जब मैं खेत में खाना लेने जा रहा था तो 11,000 वोल्टेज जो तार थी तो उसको जब नीचे गिरी पड़ी थी, हाथ से उठाया तो मुझे पता नहीं था करंट था उसके अंदर, पूरा हाथ मेरा जल गया। जलने के बाद कुछ लोगों ने उठाया फिर हॉस्पिटल लेके गए तो 2 से 3 महीने मेरा इलाज चला, फिर हाथ मेरा काटना पड़ा। तो हाथ जाने के बाद घर पे आया तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, बहुत छोटी एज थी नहीं पता था तो फैमिली में काफी उदास रहते थे भी क्या होगा आगे जाके। धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई, उसके बाद जब मैं प्लस टू के बाद हमारे द्रोणाचार्य कोच आरडीसी से मिला तो उन्होंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं जहां पैरालंपिक के जो दिव्यांग बच्चे है वो खेलते हैं, उनका कंपटीशन होता है, वो जीतते हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो फर्स्ट मैं टूर्नामेंट 2006 के अंदर बैंगलोर में खेला नेशनल में, जिसमें मैंने 4 गोल्ड जीते और इंडिया का बेस्ट एथलीट बना, वहां से मेरी शुरुआत हुई
1: जी। आपने बताया कि 1993 में आपके साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद में आपने 2006 में एक कोच के कहने पर आप मोटिवेट हुए और आपने इनमें भाग लेना शुरू किया, बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो है वो शुरुआत कैसे की और कहां से की।
2: एक्चुअली शुरू में मैं पुरुषोत्तमवास से जब घर से कॉलेज तक मैं रनिंग करके जाता था तो 10-10, 20-20 किलोमीटर रनिंग करनी, तब मेरे कोच द्रोणाचार्य आर्य सिंह जी, उनका हॉस्टल चलता था, उसने बोला कि आप बहुत मेहनती हैं। तो उनको मैंने स्टेट के बारे में बताया, मैं स्टेट खेला था तो उन्होंने बोला स्टेट कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, यदि आप थोड़ी मेहनत करो तो। देवेंद्र जाजड़िया जो पद्मश्री अवार्डी थे वो भी एनएमपीजी कॉलेज में थे पहले मेरे से, उन्होंने उनका उदाहरण दिया, उनके भी एक हाथ नहीं था, उनकी भी लैट लगी थी, उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे। तो मैं रात दिन तैयारी करने लगा, अपने हॉस्टल में रखा उन्होंने मुझे 6 महीने साल। और 2006 में जब मैं खेला तो उसके बाद वहां से शुरुआत हुई, वहीं से मेरा आयरलैंड के लिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2006 में जुलाई के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल टूर जो जुलाई में खेला उसके अंदर मेरा 16 जुलाई को मेरा गोल्ड आया लॉन्ग जंप का। और सबसे बड़ी बात है कि 16 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है।
1: आपको जन्मदिन का जो तोहफा है वो गोल्ड के रूप में मिला।
2: हाँ जी हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर।

0: के अंदर।
1: उसके बाद में आपने इस खेल को और आगे बढ़ाने के लिए और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग में कोई बदलाव किया या आप वहीं पर ट्रेनिंग करते रहे?
0: देखेंगे किसी के अंदर यदि डेडिकेशन या कोई इच्छा शक्ति अच्छी है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर ये चीजें बहुत थी, मुझे कोई परमात्मा का आशीर्वाद था। मैंने और ज्यादा मेहनत करी आके, जब मैं ग्राउंड जाता था उससे पहले दलिया बना के जाना, अपना डाइट तैयार करके जाता था, चार चार घंटे टिब्बों के सैंड रनिंग में ट्रेनिंग होती थी, वेट ट्रेनिंग, सीढ़ियां, सब ट्रेनिंग चलती थी। तो आके मैंने डाइट खा के सो जाता था, शाम को फिर ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि उससे मेरा ताइवान के लिए सिलेक्शन हुआ आगे 2007 में, नेशनल में फिर 3 गोल्ड आए मेरे 2007 के अंदर। तो वहां भी मैं ताइवान में 2 गोल्ड जीते वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियन बना और बेस्ट एथलीट बना वर्ल्ड का। तो मुझे लगा कि जो मैंने टाइम दिया, समय दिया, तो 2007 में मेरा दिल्ली कैंप था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहीं मैं रात दिन अपना ट्रेनिंग किया।
1: हम आपसे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी जगह से ट्रेनिंग ली है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आपने ट्रेनिंग ली, क्या आपने सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त की या फिर आपने प्राइवेट कोचिंग ली, किस तरह आपने अपने खेल को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया?
0: 2006 के बाद नेशनल में जब मेडल आए तो मुझे भारतीय खेल प्राधिकरण बैंगलोर से कैंप मिला, मुझे वहां मैं कैंप में रहा। फिर 2007 में मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंप में रहा, साई के अंडर में दिल्ली के अंदर। 2007 के बाद बैंगलोर में मेरा कैंप लगा, वहां कंठेरवा स्टेडियम के अंदर, वहां भी वास्तुकार द्वारा सारा पूरा खर्चा बहन किया जाता था। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक गेम्स थे तो मैं काफी लंबा टाइम रहा उस टाइम। फिर मुझे पटियाला इंडिया कैंप चलता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, वहां रहा। तो वहां पूरा डाइट का शेड्यूल है, पूरा मसाज का है, सोना बात है, स्टीम है, गवर्नमेंट का मसाज का है, पूरा रहता है और बहुत सारी फैसिलिटी है। तो उनका मुझे पूरा फायदा मिला क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से था जहां इतनी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था स्पोर्ट्स का। वहां सिंथेटिक ग्राउंड जो इंटरनेशनल इवेंट का होता है वहां मुझे वो मिला, वहां ट्रेनिंग करने का मौका। वहां पूरा बॉक्स जैम्प है, जहां स्टडी जैम्प है, बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट थे जिससे रात दिन मेरा 4 बजे उठने का शेड्यूल, रात का सोने का, मैं कभी फोन यूज नहीं करता था उस टाइम, ना मेरे पास फोन था। तो बीजिंग में मैंने 6.97 लॉन्ग जम्प किया वहां ट्रेलो के अंदर, फिर पटियाला मैं कैंप में रहा काफी टाइम। फिर बीजिंग से पहले मुझे 2 महीने के लिए इन्होंने मलेशिया शाहआलम भेज दिया गया इंडियन कैंप के लिए, वहां ट्रेनिंग कैंप बीजिंग आया। वहां मेरी काफी इंजरी थी तो अच्छा नहीं हो पाया पैरालंपिक्स में, मैं काफी उदास हो गया था। इंडिया आने के बाद मैंने बिल्कुल हौसला छोड़ दिया था, तो मैंने कहा मैं बीएड करने जाऊंगा। तो फिर देवेंद्र जाजड़िया आए थे हनुमानगढ़, वो बोले कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, कुछ ही हो जाए। फिर मैं बीएड करने चला गया, कोसा बोले कोई बात नहीं, अब टाइम है अपने पास। तो 2009 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। फिर देवेंद्र भाई साहब आए, वो बोले कि अब वर्ल्ड गेम्स आ रहे हैं 9 के अंदर, बैंगलोर खेलेंगे अपने साथ दोनों। फिर हमने वर्ल्ड गेम्स की तैयारी शुरू करी, मैंने 6.70 करके नया एशिया का उस टाइम रिकॉर्ड किया, इतनी था, तो गोल्ड जीता। फिर दोबारा मैं उस गेम के अंदर आया, फिर मुझे दिल्ली जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे कैंप मिला लंदन में, 3 महीने के लिए लंदन चले गए हम लोग। तो 2010 में सबसे गोल्डन टाइम रहा मेरा, क्योंकि जुलाई के अंदर एशियन ऑल स्टार मीट थी दिल्ली के अंदर, तब मेरा गोल्ड आया। फिर अगस्त में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, डिक्लेयर हुआ, उससे बहुत हौसला मिला उस चीज से। उसी साल मैंने अगस्त में अर्जुन अवार्ड मिला, सितंबर में मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर विल पावर एक अलग ही थी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसी साल फिर नॉटिंगम थे मैनचेस्टर के, सितंबर के अंदर लास्ट में, वहां दोनों गोल्ड जीते। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स थे 3 से 14 अक्टूबर 2010 को, वहां मेरा सेमीफाइनल आउट हो गया था। मैं उसकी कमी मैंने एशियन गेम्स में पूरी करी, मेरा गोल्ड आया, सिल्वर आया। वहां भी हमारे जो इंडियन एवेंसी वाले वहां रोज आते थे तो वो बोलते थे भी किसी का गोल्ड आया तो हम नेशनल एंथम हमें सुनने को मौका मिले, क्योंकि जिस कंट्री का गोल्ड आता है वो नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो वहां पूरी एशियन टीम में एक सिंगल गोल्ड आया था मेरा
1: जी।
0: और नेशनल एंथम बजा, उन्होंने मुझे एक वॉच गिफ्ट करी थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, वो आज ही मेरे पास रखी है। तो उनको वो बोले बड़ी खुशी मिली है कि हमारा नेशनल एंथम आज झंडा चढ़ा और राष्ट्रगान बजा है। तो उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि नहीं होते, एक आर्मी मैन जो रात दिन हमारे से भी ज्यादा एक शहीद होता है, उनको वो ड्यूटी देता देश के लिए, एक खिलाड़ी है कि बाहर अपना मेडल जीत के वो राष्ट्रगान और तिरंगा हमारा फहराता है। तो एक प्राउड मोमेंट था उस टाइम, हम बता नहीं सकते कि इतना उस पॉडियम पे खड़ा हो कितना फील हो रहा था।
1: और एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि कुछ जो खिलाड़ी तैयारी करते हैं वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन रेस्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं रखते, तो रेस्ट इसमें कितना जरूरी होता है?
0: मैंने बताया कि पहले अच्छी ट्रेनिंग, फिर अच्छा डाइट, फिर एक्टिव रेस्ट। यदि आप अच्छी डाइट खा के 2 घंटे सो लो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। हर सैटरडे को, हर खिलाड़ी को मसाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने हमारे टिश्यू थकान होती है वो मसाज से दूर हो जाती है। मसाज के 24 घंटे के बाद हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, 24 घंटे रेस्ट देना होता बॉडी को, उसके बाद ही ट्रेनिंग कर सकती हैं। और स्टीम बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, यदि हमारे पास स्टीम नहीं है तो मसाज तो हर जगह मिल जाती है, मसाज तो हम किससे करवा सकते हैं, घर से भी बाहर।

0: तो खिलाड़ी को जैसे कोई गाड़ी या सर्विस है तो वो उसको अपनी बॉडी का खुद को ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस खिलाड़ी बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, वो अपनी इस पे चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी बहुत बोलता हूँ कि मसाज बहुत जरूरी है 1 वीक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल इंसान हो वो भी करता रहे तो वो भी स्वस्थ रहता है।
1: जी
0: मसाज ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है।
1: जी आपने जो छोटी छोटी बारीकियां बताई है, मैं ये चाहूंगा जो छात्र अभी या जो खिलाड़ी अभी तैयारियां कर रहे हैं वो इन बातों को सीखें और अपनी तैयारी को और ज्यादा निपुण बनाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो खेल है जंप का, जो है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप आपने बताया, ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या विशेष तैयारी आप करते हैं?
0: लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वो खिलाड़ी करते हैं। इसके अंदर वेट ट्रेनिंग मेन रहती है, जिम का रहता है, जैसे हाफ स्कर्ट है, बॉक्स जंप है, हर्डल्स है इसके अंदर। और ज्यादा टाइम जो पिच के अंदर बीतता है, जो लॉन्ग जंप पिच बनी होती है उसमें ब्रॉड जंप हो गए, बॉक्स जंप हो गए, उसके ऊपर हर्डल रख के ज्यादा उसी पे है। सीढ़ियां है, 1 लेग से जंप है, बाउंडिंग है, होपिंग है इसके अंदर जो करते हैं। मतलब जंपिंग छोटी छोटी एक्सरसाइजें ज्यादा होती है, मतलब पावर के लिए और स्पीड के लिए की जाती है। इसमें इंड्योरेंस का इसमें थोड़ा कम रहता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं 1500 उनके लिए ज्यादा इंड्योरेंस का मैटर रहता है, शॉर्ट कम रहता है। इसमें जंपिंग वाली जितनी एक्सरसाइजें हैं ज्यादा वो ऐड करते हैं हम लोग।
1: जगशीर सिंह जी, हम आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि यदि कोई खिलाड़ी खेल को ही अपना कैरियर के रूप में चुनना चाहे तो उसके लिए क्या संभावनाएं होती है?
0: खेल में या चाहे सामान्य खिलाड़ी है, चाहे पैरालंपिक खिलाड़ी है, जितने भी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के या राजस्थान के दिव्यांग खिलाड़ी, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। क्योंकि पहले जैसा नहीं है, आज स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। हनुमानगढ़ में पहली बार सिंथेटिक ग्राउंड अभी बजट में अनाउंसमेंट किया राजस्थान सरकार ने, बड़ी खुशखबरी है कि 8 करोड़ का जहां हनुमानगढ़ जंक्शन में सिंथेटिक ग्राउंड बनेगा, बहुत बड़ी बात है। अब राजस्थान सरकार खेल निदेशालय बना रही है, और 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो स्पोर्ट्स का एक अलग ही बनेगा बोर्ड, तो उसमें भी खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। हमारा राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी स्टेट में गोल्ड जीता है उसको 1 लाख का केस प्राइज दिया जाता है,
1: जी
0: और सिल्वर जीता 50,000 रूपया और ब्रॉन्ज मेडल जीता 30,000 रूपया। ऐसा ही नेशनल में है, नेशनल में यदि गोल्ड जीता है 2.5 लाख, और यदि वो सिल्वर जीतता है तो 2.5 लाख, और 1.5 लाख रूपया ब्रॉन्ज मेडल भी है। खिलाड़ियों को समय समय पर ये राशि मिलती रहती है, और यदि क्योंकि डाइट का मैटर रहता है, खिलाड़ी को डाइट पैसा मिलेगा तो डाइट खाएगा खिलाड़ी,
1: जी बिल्कुल
0: उसका है गवर्नमेंट। अब पहले नहीं था, अब देखो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है खिलाड़ी, उसको डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न में नौकरी है, कुछ नहीं करना, उसको एक फॉर्म भरना है और 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है। और उसके
1: आपके
0: अंदर
1: कहने का मतलब, अगर कोई खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज भी जीत जाता है तो उसको डायरेक्ट नौकरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है?
0: बिल्कुल सर, मेरे साथ बहुत सारे खिलाड़ी है जूनियर है जो नेशनल लेवल पे खेले हैं और मेडल आया उनका लगे हुए हैं। बालाराम है, संतोष है, बहुत सारे रजनी है, ये सारे नेशनल मेडलिस्ट, इनके नाम लिए मैंने जो हनुमानगढ़ के, और ये सारे सरकारी नौकरी लगे हुए आईएलडीएस की पोस्ट पे आज। और 56 डिपार्टमेंट दिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, और 56 डिपार्टमेंट में कोई भी इनकी इच्छा के अनुसार जो दिव्यांग खिलाड़ी उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। वो इतनी हेल्प इतनी सरकारें कर रही है, तो मैं कहूंगा भी आने वाले समय के अंदर और ज्यादा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, और जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो हौसला बिल्कुल भी नहीं हारे, वो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे।
1: जी जगशीर जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी बातें बताई। हम चाहेंगे कि आपकी बातें सुनकर जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज्यादा फाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे, और भारत के लिए कोई और जो मेडल है वो हासिल करेंगे। आप भी इस खेल से जुड़े रहें और लोगों को इस खेल की अच्छी जानकारी दें और भारत का जो नाम है इसी तरह रोशन करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: दोस्तों, ये थे पैरा एथलीट जगशीर सिंह, आपसे भेंट कर रहे थे नवीन सिसोदिया। आइए अब सुने जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से आप ही की चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, खेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे व्यक्तित्व को भी दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति खेल से जुड़ा है तो वो अपने जीवन में निश्चित रूप से अनुशासन का पालन करता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर वो ध्यान देता है, और खेल खेलने से ही खेल भावना का निर्माण होता है और आपके व्यक्तित्व को जो है खेल निखार देता है। इन्हीं खेलों में से एक खेल है जूडो। जूडो खेल के बारे में बात करने के लिए हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शेर सिंह को। आप 5th डैन ब्लैक बेल्ट हैं जूडो में, कॉमनवेल्थ में

0: मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2018 में। ब्रांड एम्बेसडर आप रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्वीप आइकॉन जिसको कहते हैं। इंटरनेशनल जूडो के अंदर इन्होंने कई सारे जो शोध पेपर है वो भी इन्होंने छपवाए हैं। 1995 से लेके आज तक ये स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जूडो कोच के पद पर कार्यरत हैं। और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से जहां भी जूडो से संबंधित कमेटियां अगर जाती है, पैनल्स जाते हैं, उनमें ये सदस्य के रूप में जरूर पहुंचते हैं और ए ग्रेड के इंटरनेशनल रेफरी हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शेर सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर शेर सिंह। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जूडो खेल क्या है, कहां से आया है?
1: जूडो खेल एक जापान का खेल है जी। सबसे पहले डॉक्टर जिगारो कानो जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 1860 में एक जुजुत्सु जो मार्शल आर्ट थी उसमें उसको अच्छी बातें लॉकिंग और चोकिंग को रखकर उसको रख लिया और दूसरी चीजें छोड़ दी। जूडो एक जबरदस्त गेम है, बढ़िया टेक्निक थी उनको रखा और दूसरों को उनको रखा, जैसे एक बहुत अच्छा गेम इन्होंने तैयार कर दिया
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जूडो कब शुरू किया, कब आपका लगाव इससे शुरू हुआ?
1: सर मैं 87 में ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे गुरुजी राजेंद्र सिंह बिश्नोई जो साई कोच थे गंगाधर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने वहां जूडो मेरे गंगा सिंह स्टेडियम में सिखाना शुरू किया।
0: आपके मन में कैसे आई कि मेरे को सीखना चाहिए?
1: मैंने कई बार टीवी में देखा तो मुझे ऐसा लगा भी जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहता था, इससे यदि मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा तो ये मुझे अच्छा रहेगा। तो मैं हालांकि बेसिकली मैं रेसलिंग से था और कबड्डी और रेसलिंग खेलता था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो साई के चीफ कोच डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिश्नोई थे वो और देविंदर सिंह जी, इन्होंने जूडो के बारे में मुझे बताया, फिर मैं इनसे सीखा और 87 से मैं जूडो खेल के 91 में मैं राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला। उसके बाद मुझे एक ललक सी लगी, मैं जूडो ही में परमंगत होना है, तो इसके बाद लगातार आज तक जूडो खिला रहा हूं और खेलता हूं।
0: आप 95 में आपने राजस्थान सरकार में एक फिजिकल टीचर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो उस वक्त भी आपने बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया?
1: तो मैंने 93 में एनआईएस पटियाला में जाकर अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया, जिसे हमारे चीफ कोच जे जी शर्मा जी और टोनी ली जो इंडिया के कोच थे वो उन्होंने मैंने सीखा। और 94 में मैं डिप्लोमा लेके घर आया, फिर उसी दौरान राजस्थान सरकार ने सर्विस के लिए कुछ पोस्टें निकाल रही थी और मेरा 94 में मैंने फॉर्म भरा और फरवरी 95 में मेरी पोस्टिंग वहीं स्कूल में होगी। तो तब से लेकर आज तक उसी स्कूल में हूं और वहीं सेवा कर रहा हूं।
0: क्या बात है। उसके बाद में जैसे आपने जूडो की बात की, तो जूडो में आप कब राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो तो राजस्थान सरकार में हुई, फिर आप कोच के रूप में किस तरह उभर कर आए?
1: सर इसमें क्या, राज्य सरकार तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जितने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाती हैं ये उनके तत्वावधान में होता है। तो मैं उसके बाद 95 के बाद मैंने एनडीआईयू नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिशिएटिंग उसके तहत मैं ए ग्रेड में पास हुआ। 96 में सबसे पहले मैं इम्फाल में गया और इम्फाल में गया और वहां मैंने रेफरशिप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने टीमें जाती हैं ओपन के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, स्कूल के लिए भी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो अलग से एक भारत सरकार खेल मंत्रालय चलाता है, तो उसमें भी मैं राज्य सरकार की ओर से राजस्थान एसोसिएशन की ओर से मैं कोच के रूप में प्रतिनियुक्त होकर जाता रहा, जिससे मैं मेरा आगे जुड़ाव और बढ़ता गया
0: जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जैसे हम सुनते थे जूडो खेल के रूप में तो है ही, लेकिन इसको आत्मरक्षा के रूप में ज्यादा देखा जाता है, तो जूडो और ताइक्वांडो जो है इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है?
1: सर जूडो सबसे पुरानी जो जूडो कराटे थी 1972 के बाद जूडो कराटे अलग कर दी, ताइक्वांडो कुंग फू थांग था ये इसकी एक मार्शल आर्ट की वेरायटी है। ठीक है बहुत बढ़िया ताइक्वांडो में, लेकिन उसमें पंचिंग है किकिंग है, लेकिन जूडो एक बहुत ही शालीनता गेम है, ऐसे एक गेम है। तो जूडो के खेलने से भी लड़कियों के लिए आजकल इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे क्या कोई भी शोध इनको घेर ले उसको ये एक कुछ ही पल में टेक्निक सीख कर तू उनको उनसे

0: बचा जा सकता है। इसलिए जूडो एक सेल्फ डिफेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है जिसमें तकरीबन जो टेक्निक है वो जूडो की ही इसमें यूज होती है।
1: जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जूडो खेलते वक्त क्या चोट लगने की संभावना भी रहती है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है देखने वाले को। जूडो खेलने से चोट नहीं लगती, क्योंकि जब हम बच्चा 10-11 साल से हम खिलाते हैं तो उसको गिरने की पहले ही हम ऐसी फॉलिंग सिखाते हैं जिससे क्या वो बच्चा परिपक्व हो जाता है और उसकी साइड लैंडिंग ऐसे करवाती हैं कि यदि वो हाथ पे गिरेगा तो उसके सारा हाथ जो उसका शॉक ऑब्जर्व कर लेता हाथ, तो हम उसके गिरने की टेक्निक ही ऐसी उनको सिखा देते हैं जिससे उनको चोट नहीं लगती। और जूडो में कोई चोट नहीं लगती। हाँ, जूडो वाला चोट मार सकता है, उसको चोक कर सकता है, उसको लॉक करता है। लॉकिंग की बहुत टेक्निक है, चोकिंग 10-12 सेकंड के लिए आप चोक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद अपने कुछ भी कर सकते हैं।
1: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो कौन सी उम्र से वो शुरू कर सकता है?
0: सबसे पहले हम 9-10 साल का बच्चे को लेते हैं, उसको सब हम जिमनास्टिक की सारी एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्या वो बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हो जी। 10-11 साल से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा को वहाँ वेट ट्रेनिंग भी होती है सबको, लेकिन छोटा बच्चा ओवरलोड हो जाता है, हम उसको वेट ट्रेनिंग नहीं देते। धीरे धीरे धीरे उसको टेक्निक सिखाते हैं जिससे क्या वो जैसे जैसे बच्चों के साथ सीखता है तो 2-3 सालों में वो सारी एक्सरसाइज करने लग जाता है।
1: जी, जैसा आपने बताया कि अगर 9-10 साल का बच्चा आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसको जिमनास्टिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें जो आप उनको सिखाते हैं और किस तरह से आप उसको 9-10 साल के बच्चे को ट्रेन करते हैं, आप विस्तार से बताइए।
0: सर, सबसे पहले हम बच्चा जब नया आता है उसको सब उसको पहले 1-2 दिन क्लास लगाते हैं भी ऐसे बच्चा, उसको हम मोटिवेशन करते हैं भी तू ऐसे बनेगा तो अच्छा होगा, नेशनल इंटरनेशनल पर तेरा नाम चलेगा। तो बच्चा क्या सबसे पहले रोलिंग स्टार्टिंग, फ्रंट रोल और बैक रोल, इसमें काफी प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई बच्चे आते हैं फ्रंट रोल करते हैं क्या बैक रोल, उनका नेक दर्द या पेट की जो ये ओब्लिक मसल होते हैं ये दर्द करने लग जाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे धीरे उसको हम लोड देते हैं, उसके बाद उकेमी है जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, वो कैसे गिरना है, जैसे हिप कैसे लैंडिंग करेगी और जो अपनी टांगे हैं उसका क्या एंगल होगा और जो अपना ठोड़ी है वो कहाँ पिछले सिर कितना उठाना, ये उसको हम बारीकियों से उसको सिखाते हैं। तो उसके जैसे वो नीचे बैठता है पहले उसे हिप लगती है, फिर वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पर टांगे उसके 45 डिग्री एंगल से 90 तक जाते बीच में रखते हैं और सिर पीछे उठाता है, ऐसे गिरता गिरता वो जैसे सीख जाता है तो वो उसमें हम उसको फिर उसको टेक्निक भी जैसे पहले शोल्डर थ्रो देना है उसको, फिर कमर के हाथ में हिप थ्रो देने, ये धीरे धीरे सिखाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जब तक आदमी खेलता तो सीखता ही रहता है।
1: जी, भारत की अगर हम बात करें जूडो के अंदर तो आप क्या स्थिति देखते हैं खेल के दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि ये खेल ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में और अन्य भी जो इंटरनेशनल स्तर के जो चैंपियनशिप्स होती हैं वहां पर ये अधिसूचित है, तो भारत की इसमें क्या स्थिति है?
0: सर, भारत में आजकल भारत सरकार खेलों के बारे में बहुत ही अच्छा भी रिस्पांस दे रही है, भी बड़ी बड़ी अकेडमी खोली हुई है। जैसे सबसे पहले GSW में जो औद्योगिक घराना है जिंदल स्टील, उन्होंने खोली हुई है। उसके बाद भोपाल साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत बड़ी एक अकेडमी खोली है। इम्फाल में
1: जी
0: बहुत बड़ी अकेडमी खोली है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है
1: जी।
0: तो उसके बाद वहां पर वो बहुत अच्छी डाइट और बहुत ही अच्छे कोचेज, जैसे मैं बताऊं JSW में फॉरनर कोच है और अहमदाबाद में संस्कार धाम है एक जगह, वहां पर भी फॉरेन कोच जॉर्जिया के कोच रख रखे हैं। इसी प्रकार
1: तो ये सभी जो आपने बताई संस्थाएं ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं?
0: बिल्कुल, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के ही खेल मंत्रालय के नीचे ही आती हैं
1: ये सारी।
0: और उनमें बड़े 10-10 कोच और बड़े हाई परफॉर्मेंस कोच रख रखे हैं और फॉरन और जो औद्योगिक घराने हैं JSW है इन्हों ये भी फॉरन कोच रख रखे हैं जो बड़े ओलंपिक मेडल है, भारत के खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और तैयार करते हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
1: कुछ हम खिलाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अच्छा कर रहे हैं।
0: हमारे अभी लेंथोई है, अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आई है। हमारे एक लड़का हर्ष है वो, और अवतार सिंह अभी ओलंपिक पिछला खेल के आया था, ओलंपिक खेल के वो अच्छा है। तो लड़के बहुत है सर, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। कोचिंग के लिए जॉर्जिया में सेंटर बनाया, वहां जाके भी प्रैक्टिस करती हैं। और अभी जापान भी जेएसडब्ल्यू की टीम

0: जापान जा रही है, वो भी अभी दूसरी बार जा रही है, वहां भी 10-10, 15-15, 20-20 दिन की ट्रेनिंग कैंप लगे। ओलंपिक से पहले भारत सरकार का एक मुख्य देश है ये जो अपना ओलंपिक इंडिया में हो रहा है, तो उसमें भारत ओलंपिक में खेले और मेडल जीते।
1: बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि भारत गोल्ड मेडल तक लेकर आए। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी इस खेल से जुड़ा हुआ है उसको अपनी फिटनेस और रूटीन में क्या विशेष चीजें ध्यान रखनी चाहिए?
0: लग सर आजकल तो बड़ी हाईटेक फिटनेस है सर
1: जी,
0: बड़े बड़े जिम हैं, लेकिन आम आदमी के लिए या आम खिलाड़ी के लिए हम बच्चों को रनिंग देते हैं, रनिंग के साथ साथ वो उसको एक्सरसाइज ऐसी है वो फिटनेस के लिए जंपिंग जंपिंग ये बाइसेप ट्राइप्स के लिए पुशअप पुलअप ये देते हैं रनिंग, और जिम के लिए ट्रेड मिले हैं आजकल, तो फिटनेस के लिए आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: तो डाइट की अगर हम बात करें तो
0: डाइट सर आजकल जैसे बड़े बड़े सेंटर हैं उनके लिए तो डॉक्टर हैं, वो कितना आपको मिनरल लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो सब उसके अनुसार चलता है
1: जी।
0: जो हमारे सेंटर है जो जैसे चलते हैं गंगानगर कर्णपुर जयपुर, इसमें जो मेरे कोचिज है वो डाइट के लिए आजकल प्रोटीन का बड़ा रिवाज चलता है, वो लेते हैं लड़के प्रोटीन
1: जी,
0: सप्लीमेंट का बहुत रिवाज, वो आजकल बना देते हैं अब इतना आजकल आ जाता है, लेकिन डर ये लगता है कि उस प्रोटीन में गलत ना हो।
1: जी बिल्कुल, उसकी शुद्धता बहुत जरूरी,
0: शुद्धता बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर शेर सिंह, हम आपसे अब आखिर में यही जानना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी जूडो में जाना चाहते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं या सिर्फ आत्मरक्षा के रूप में भी इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा यही संदेश है कि बच्चे लड़के या लड़कियां जूडो जरूर खेलें, जिससे क्या है सेल्फ डिफेंस में और वो फिटनेस में, वो जूडो में खिलाड़ी ना बने भले ही लेकिन सेल्फ डिफेंस खेलें जिससे आत्म रक्षा जरूर करें
1: जी।
0: और हमारे मैं ये थोड़ी ये भी बता दूं, हमारे सेंटर के 5-6 लड़के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।
1: बिल्कुल,
0: बलविंदर सिंह ग्लासगो में अभी खेल के आया है कॉमनवेल्थ और जूनियर वर्ल्ड खेल के आया है, मनप्रीत है, ध्यान सिंह अभी वर्ल्ड पुलिस कनाडा में अभी गया था ब्रम्पटन में, वहां पर मेडल गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है, और अभी लड़का एक सिलेक्ट हुआ है मेरे साथ जा रहा ताशकंद के लिए, तो हमारे 3-4 लड़के और गगनदीप कौर एक लड़की दक्षिण कोरिया में गई हुई थी, तो हमारे लड़के गंगानगर जिले के वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाम रोशन कर,
1: गर्व की बात है हमारे लिए। डॉक्टर शेर सिंह, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और खेल से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, ये था खेल जगत का आज का अंक, जिसमें आपने दो भेंट वार्ताएं सुनी, एक थी पैरा एथलीट जगशीर सिंह से और दूसरी डॉक्टर शेर सिंह जूडो कोच से नवीन सिसोदिया की बातचीत। खेल जगत के लिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति, आलेख और वाचन रोहिता शर्मा का।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये गीत है चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज और संगीत, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

0: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म है दिल्ली का ठग।

ये गीत है गाइड फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, एस डी बर्मन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस

प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।